सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदाब नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज रविवार 26 जुलाई 2026 है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में आकाशवाणी की ओर से आप सभी श्रोताओं और पवित्र यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। सुबह की सुहानी बेला में हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपके जीवन में सुख, शांति और नए उत्साह का संदेश लेकर आए। हर नई सुबह हमें याद दिलाती है कि हर एक दिन नई शुरुआत है, एक नया अवसर, एक नई उम्मीद और अपने सपनों की ओर बढ़ने का एक नया हौसला। मैं हूं अनिका रशीद फराश और अगले कुछ पलों तक रहूंगी आपके साथ। इस विशेष प्रसारण में हम लेकर आएंगे श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स और दिल को छू लेने वाली बातें। तो चलिए श्रद्धा और मुस्कुराहट के साथ इस नए दिन का स्वागत करते हैं। एक बार फिर आप सभी को रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालीतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा का 19वां जत्था जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है। प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल 166 छोटे बड़े वाहनों में 4,474 श्रद्धालु रवाना हुए। इनमें 3,531 पुरुष, 785 महिलाएं, 10 बच्चे, 96 साधु, 51 साध्वियां और एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल हैं। यात्री बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की यात्रा करेंगे, जबकि पहलगाम मार्ग बारिश के कारण सड़क की स्थिति अनुकूल न होने के चलते फिलहाल बंद है। हम सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुखद और मंगलमय यात्रा की प्रार्थना करते हैं। बने रहिए हमारे साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालीतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा का 19वां जत्था जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है। प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल 166 छोटे बड़े वाहनों में 4,474 श्रद्धालु रवाना हुए हैं। इनमें 3,531 पुरुष, 785 महिलाएं, 10 बच्चे, 96 साधु, 51 साध्वियां और एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल हैं। यात्री बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की यात्रा करेंगे, जबकि पहलगाम मार्ग बारिश के कारण सड़क की स्थिति अनुकूल ना होने के चलते फिलहाल बंद है। यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि अपने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। हम सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की प्रार्थना करते हैं। बने रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण के संग।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें। विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए

0: आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने।
2: सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
2: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
2: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
5: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी।

0: विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ।

0: रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा सम्पन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPA के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPA ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPA ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:00 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I'm Sunil Varma.

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तिलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नशर किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के शुरका से बातचीत करेंगे। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले 400 से ज्यादा नौजवान शुरका वजीर आजम से बराह रास्त बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 पिछले महीने 4 से 30 तारीख तक दो मरहलों में मुनाकिद किया गया, जिसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 दरख्शा गांवों का इहाता किया गया। इस प्रोग्राम के शुरका का इंतखाब मुल्कगीर ऑनलाइन क्विज मुकाबले के जरिए किया गया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के दौरान शुरका ने मकामी बिरादरियों के साथ रहकर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिनमें सफाई मुहिम, सरकारी स्कीमों से मुतालिक आगाही मुहिम, युवा सम्मेलन, सकाफती तबादले के प्रोग्राम, शजरकारी मुहिम, मिनी मॉडल पंचायत, मकामी दस्तकारों से बातचीत और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इदारों के दौरे शामिल थे। इस प्रोग्राम ने शुरका को सरहदी इलाकों के समाजी इकतसादी हालात, सकाफती विरसे और तरक्याती उमंगों का बराह रास्त मुशाहदा करने का मौका फराहम किया। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसे माई भारत के जरिए नाफिज किया जा रहा है, वजीर आजम के इस नजरिए को हकीकत बनाने के लिए तैयार किया गया है कि भारत के सरहदी गांव को मुल्क के पहले गांव के तौर पर देखा जाए और उन्हें विकसित भारत की जानिब सफर में सरगर्म शराकत दार बनाया जाए। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का अपना सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गई हैं। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने तीनों यूरोपीय मुल्कों के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक को वसअत देने के मकसद से आला सतही मसरूफियात का इनेकाद किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान कई तारीखी हुसूलियाबियां हुई, जिनमें किसी भारतीय सदर जमहूरिया के मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के पहले सरकारी दौरे और 3 दहाई बाद भारतीय सदर का रोमानिया का पहला सरकारी दौरा शामिल हैं। अपने पूरे सरकारी दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू ने सरबराहान मुमलकत के साथ वफद की सतह की बातचीत की, कारोबारी फोरम से खिताब किया और भारतीय बिरादरी से मुलाकात की। सदर जमहूरिया को रोमानिया में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की जानिब से एजाजी डिग्री भी दी गई, जो कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ते तालीमी और अवाम से अवाम राबतों की अक्कासी करता है। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने भारत की तेज़ रफ्तार माशी तरक्की, टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशकदमी और आलमी इश्तराक के तई अहद बस्तगी को नुमाया किया। साथ ही सदर जमहूरिया ने तजारत, जिद्दत तराजी, तालीम, डिजिटल टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजबूत तआवुन की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया मुर्मू के दौरे ने मशरक़ी यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात में गर्मजोशी को बढ़ाया है और मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत दी है। सुभाषरी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन भारतीय फौजियों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है, जिन्होंने साल 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के इलाकों को दोबारा हासिल किया था। मरकजी तकरीब लद्दाख के दराज की करगिल जंगी यादगार पर मुनाकिद हो रही है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: द्रास की करगिल जंगी यादगार में 27वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर हुबुल वतनी पर मबनी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल जंगी यादगार पर ऑपरेशन विजय के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने वाले जाबाजों की यादगारों पर गुलाह अकीदत नजर करते हुए तकरीबात की क्यादत कर रहे हैं। वजीर दिफा करगिल जंगी यादगार के वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का इफ्तिताह कर रहे हैं। यादगारी कुटिया और वीर

0: लक्ष्मी का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो वीर नारियों और वीर माताओं से मुलाकात कर रहे हैं और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करगिल विजय दिवस मुल्क की सालिमियत की हिफाजत के तई भारत की मुसल्ह अफवाज की शुजात कुर्बानी और गैर मुतजलजल जज्बे की याद दिलाता है। द्रास से इनायत अली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क करगिल की नाकाबिले रसाई पहाड़ियों में साल 1999 में बेमिसाल शुजात का मुजाहरा करने वाले बहादुर फौजियों का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ते एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज से दो रोजा मुजाहरों का ऐलान किया है, जिनका इख्तिताम मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से होगा। हुकूक का मुतालबा करने वाले रहनुमाओं उमर नाजिर कश्मीरी और एडवोकेट ख्वाजा मेहरान ने दादियाल में मुकम्मल बंद की अपील की है और मीरपुर डिवीजन के लोगों से तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की है। कल जोहर की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद की जानिब होने वाले लॉन्ग मार्च से पहले मीरपुर के मुजाहिरीन के काफिले रावलकोट में जारी धरने में जम हो सकते हैं। ये ताज़ा एहतजाज बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़ते दाम और सिविल हुकूक पर आयद पाबंदियों के मामले में बढ़ते अवामी गुस्से की अलामत हैं। इस दौरान मुंतजमीन ने पूरे एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन से नज्म व ज़ब्त और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है। आला दर्जाबंदी की हामिल अनाहा सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाहत ने कनाडा के निगारा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी की हामिल सलीम को 11-3, 11-7 और 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मिस्र के खिलाड़ियों ने लगातार 16 साल तक ये खिताब अपने नाम किया, ताहम अनाहत ने एक भी मैच हारे बगैर इस इजादारी को खत्म किया। FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत के मर्दों की सब जूनियर टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खिलाड़ी रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियन बनाया। इस जीत के साथ ही मर्दों की भारतीय टीम ने इलीट पूल टेबल में सबसे ऊपर जगह बना ली है। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने FIH यूथ हॉकी 5 आलमी कप के इफ्तिताही मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात की आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा, इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने लिखा है कि विकसित द्राक्षा गांव प्रोग्राम 2026 के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुरका से आज बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम कौमी यकजहती, तरक्की, नीज सरहदी गांव की हिकमत अमली की अहमियत की गहरी समझबूझ को फरोग देता है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का कलमदान सौंपा गया। जंतर मंतर पर CJP ने अपना एहतजाज वापस लिया, इस खबर को आज के सभी अखबारों ने सफे अव्वल पर जगह दी है। उत्तर प्रदेश का कदीम बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फेहरिस्त में शामिल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत की जानिब से मुतालबा तस्लीम किए जाने के बाद CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहा सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल।

0: तथा डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा का 19वां जत्था जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है। प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल 166 छोटे बड़े वाहनों में 4,474 श्रद्धालु रवाना हुए हैं। इनमें 3,531 पुरुष, 785 महिलाएं, 10 बच्चे, 96 साधु, 51 साध्वियां और एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल हैं। यात्री बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की यात्रा करेंगे, जबकि पहलगाम मार्ग बारिश के कारण सड़क की स्थिति अनुकूल न होने के चलते फिलहाल बंद है। यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें। हम सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की प्रार्थना करते हैं। बने रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: स्वागत है।
1: जी बहुत शुक्रिया आपका। जी
0: क्या कुछ अपडेट्स हैं मौसम के और यातायात के हवाले से?
1: देखिए जहाँ कल दिन भर जम्मू संभाग के साथ साथ शहर में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहा, इस दौरान पवित्र श्री अमरनाथ जी श्रद्धालुओं को पहले निवास स्थान भगवती नगर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने की अनुमति के बाद जहाँ एक जत्था गाठी की और रवाना हुआ, वहीं जो दूसरा एक जत्था है वो एक बार फिर यहाँ निवास स्थान तैयारियों में जुट गया। याद रहे कि कल यहाँ जम्मू से जम्मू

से निवास स्थान से भगवती नगर से 6000 से ज्यादा श्रद्धालु सिर्फ बालटाल मार्ग की तरफ ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना किए गए। तो वहीं आज सुबह तड़के भी देख जो अभी तक जानकारी मिली है लगभग 4474 श्रद्धालुओं का 1900 जत्था यहाँ भगवती नगर निवास स्थान से बाबा बर्फानी के फलक शगाफ जयकारों के बीच सख्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ घाटी की ओर रवाना हुआ और जत्थे में लगभग 3531 पुरुष, 7085 महिलाएं, 10 बच्चे और 46 साधुओं के साथ 51 साध्वी 167 वाहनों में घाटी की ओर प्रसन्नता के साथ और सुरक्षा के साथ अग्रसर है। हालांकि जैसा मैं कह रहा था कि कल दिन भर बारिश के दरमियान राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भूस्खलन कहीं जगह हुए बारिशें होती रही, जहां संभाग में बारिशें होती रही वहीं शहर के बीचों बीच भी बहुत बारिशों का सिलसिला जारी रहा। इस बीच कहीं खबरें भी आई कि भूस्खलन के भी राजमार्ग पर वाकात सामने आए हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर सड़क को साफ कर दिया गया ताकि सड़क को खास तौर पर श्रद्धालुओं के लिए जल्द से जल्द फिर से दोबारा ठीक किया जाए। इस दौरान श्रद्धालु भी बाबा बर्फानी के जोश जज्बे को बराबर बनाए हुए हैं और जयकारों के साथ बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ पहुंच रहे हैं। वहीं पवित्र यात्रा की संचालन को लेकर और समीक्षाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। कल भी उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और श्री अमरनाथ जी के ट्रैक्स की काम की निगरानी और दोबारा चलाए जाने और उनको बेहतर चलाए जाने को लेकर भी बैठक हुई और बैठक में उच्च अधिकारी कैंप डायरेक्टर शामिल थे। लगातार हो रही बारिशों से पवित्र श्री अमरनाथ जी के द्वार की तरफ जाते ट्रैक्स को भी नुकसान पहुंचा है क्योंकि बारिशें लगातार थी, लेकिन इस बीच खास तौर पर ये समीक्षा इसी को लेकर हुई कि ट्रैक्स को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, सड़कों को किस तरह से युद्ध स्तर पर ठीक किया जाए और काम को हाथ में जल्द से जल्द दिया जाए। इसी पर उच्च राज्यपाल ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने, ट्रैक के दोनों तरफ रेलिंग, भूस्खलन की जगहों को पहचान करने और सुरक्षित कदम उठाने के निर्देश दिए। ट्रैक पर एडिशनल MRT यानी खासतौर पर जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं उनको एडिशनल टीम्स को भेजा गया है ताकि मौसम के चलते किसी तरह से कोई भी सिचुएशन में ये मौसम के जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स जो है वो रेस्क्यू कर सके। और जिस तरह से मौसम विभाग के बुलेटिन आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी खबरें आ रही हैं, उसमें अभी भी मौसम पूरी तरह से साफ तो नहीं है। आज भी जम्मू में मैं कहूँ तो ऑरेंज अलर्ट है और बारिशों का होना तय है, लेकिन अभी हालांकि आसमान अभी बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा, स्थानीय लोगों का बाजार में संख्या कम है, उसी तरह से श्रद्धालु भी, क्योंकि बारिश के मौसम में श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी कहीं अपने जहां श्रद्धालु ट्रांजिट कैंप्स में रुक जाते हैं वहीं स्थानीय लोग भी कहीं दुकानों के अंदर, कहीं घरों के अंदर और बारिशों में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जहाँ यहाँ के बाजार भी लोगों की और खासतौर पर श्रद्धालुओं की संख्या कम देखी गई, लेकिन खासतौर पर ट्रांजिट कैंप्स के अंदर ही सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ खाने पीने के अलावा सभी तरह के प्रबंधन रखे गए हैं, वक्त पर खाना मिलता है, बाकी भी सारी चीजें जो उसके अलावा है, खासतौर पर सावन के महीने में यहाँ पूजा अर्चनाएं और भजन संगीत और जो तरह से सावन के महीने में खासतौर पर पूजाएं होती हैं वो उसमें खासतौर पर इस सप्ताह में जो है श्रद्धालु लगे हुए हैं और स्थानीय मंदिरों में भी इस तरह से पूजा अर्चनाएं होती हैं, उसमें भी श्रद्धालु बिल्कुल अपनी तरफ से वो पहुंच रहे हैं। यहाँ के स्थानीय मंदिरों में बहुत बड़े मंदिर हैं, यहाँ जैसे रघुनाथ जी का मंदिर है और उसके अलावा रंबेश्वर मंदिर है और उसके अलावा पंचवक्तार मंदिर है। ये बहुत बड़े स्थल है, सावन के महीनों में इन मंदिरों में खास तौर पर पूजा अर्चनाएं होती है, तो उसमें देखा जा रहा है कि

0: श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में इन पूजा अर्चनाओं में हिस्सा लेते हैं और खासतौर पर जो यहाँ शहर का बनाया गया था बारिशों से पहले सिलसिला की किस तरह से श्रद्धालुओं को पर्यटन के साथ भी जोड़ा जाए ताकि पर्यटक स्थलों का भी उनको दौरा कराया जाए, लेकिन बारिशों की वजह से वो किसी रुक भी गया, लेकिन दोबारा उसे चलाने के लिए सिर्फ मौसम के साफ होने की जरूरत है। लेकिन इस बीच युद्ध स्तर पर जो काम हो रहे हैं खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और जैसा मैंने कहा कि कल भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खासतौर पर जो बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जाते ट्रैक्स हैं उनको खासतौर पर बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि श्रद्धालुओं की जो ये यात्रा है वो सुखद रहे, आसान बनी रहे, और जो श्रद्धालु जिनको कल से 6 दिन के बाद इजाजत दी गई थी, अनुमति दी गई थी दोबारा बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, उन्हें किसी तरह से कोई मुश्किल न पेश आए। और खासतौर पर जो पहलगाम का प्राचीन रास्ता है वो अभी फिलहाल यहाँ से उसकी इजाजत नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जो रुके थे नुनवन के शहर जो वहाँ पहलगाम के शिविरों में जो रुके श्रद्धालु हैं उन्हें इजाजत मिल गई थी कि वो ट्रैक की तरफ जाए, लेकिन बारिशों का सिलसिला खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर में जानकारी के मुताबिक अभी जारी है। तो पूरी तरह से कोशिशें जारी हैं, चाहे जम्मू के स्तर पर हो, जम्मू के संभाग में हो, कश्मीर के संभाग में हो, श्रद्धालुओं की यात्रा को किस तरह से बेहतर और सुविधाजनक बनाया जाए उसके लिए पूरी तरह से कोशिशें भी की जा रही हैं, समीक्षाएं भी की जा रही है और खासतौर पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और यात्रियों को भी इस विपरीत मौसम के लिए एडवाइजरीज भी जारी की जाती है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ अपने निवास स्थान भगवती नगर में कि किस तरह से इस मौसम में आपको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, क्या किस तरह से आपको ट्रैक्स पर चलना है और एक दूसरे के साथ।
1: ऐसी कोई खास एडवाइजरी है, कोई सूचना जो प्रशासन के द्वारा आई है जिन पर आप चाहेंगे कि आप यात्रियों को बताएं और वो उसका पालन करें?
0: देखिए खासतौर पर इस मौसम में आपके क्योंकि ये पहाड़ी श्रृंखलाओं का सफर है तो इसलिए यहाँ खासतौर पर आपको किस तरह से क्या क्या कपड़े रखने होते हैं, आपको छाता, आपकी आपका बूट, आपका अगर आपके पास बरसाती हो गर्म कपड़े होने चाहिए, क्योंकि मौसम एक बहुत बड़ी सिचुएशन है इस पूरी यात्रा में। पहले दिन से ही चाहे गर्मी भी थी, जिन दिनों में मौसम बिल्कुल ठीक था उन दिनों में भी ये एडवाइजरी थी कि पहाड़ों पर कई बार मौसम अचानक चेंज हो जाता है और उसमें आपको किस तरह से ख्याल रखना है अपने स्वास्थ्य का, इसीलिए यहाँ सभी तरह की व्यवस्थाएं पहले शिविर से ही रखी गई है, चाहे योग की हो, चिकित्सा की हो, आपका ब्लड प्रेशर है, आपको अपनी दवाइयां साथ रखनी है, आपको अपने जूते जो इस खासतौर पर बारिशों के दरमियान जो लगाए जाते हैं उस तरह के जूते आपने साथ रखने हैं और उसके साथ साथ आपने गर्म कपड़े भी साथ रखने हैं, बरसाती साथ रखनी है, छाता साथ रखना है और जिस जुट के साथ आप जा रहे हैं और जिस सिस्टम में आप जा रहे हैं एकजुटता के साथ आपने चलना है, एकजुटता के साथ एक दूसरे का साथ लेकर चलना है। और खासतौर पर जो सुरक्षा को लेकर एजेंसियों की एडवाइजरीज है कि आपको वहीं रुकना है जहां आपको रोका जाए और वहीं पर अपना नाश्ता जो बाकी सारी चीजें हैं वो करनी है और जो इन टीमों के साथ बाजाबता एक सुरक्षा कवच भी चलता है, बाजाबता आपको साथ साथ बताया भी जाता है कि आपको क्या करना है, तो उन सारी एडवाइजरीज को आपने इग्नोर नहीं करना है, वो सब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ही ली गई है, चाहे आपकी चलने की को लेकर हो, पहाड़ी श्रृंखलाओं में किस तरह से आपने निकलना है, पहुंचना है, चलना है, तो वो सब उसको लेकर हो या सुरक्षा को लेकर हो, तो ये सभी चीजों का आपने मान रखना है और जो एडवाइजरीज रखी गई हैं पानी पीने की साथ साथ आपने अपना थोड़ा खाना भी साथ रखना है, कुछ आपने क्योंकि साथ चलते चलते जब आप पहाड़ों में चलेंगे तो वहां आपको भूख भी लगेगी, वहां आपको मौसम एक अलग तरह का होता है, वहां ऑक्सीजन की कमी भी समटाइम्स हो जाती है, या ट्रैक पर चलते चलते आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है, तो ये सारी एडवाइजरीज का जो ट्रेनिंग भी है यहाँ इस निवास स्थान पर दिया भी जाता रहा है और आज भी दिया जाता है और इसलिए उसकी

0: जंग होती है तो स्वाभाविक है कि जो श्रद्धालु हैं उस पर अमल भी करते हैं, तभी यात्रा इतनी बेहतर तरीके से चल भी रही है। और किसी तरह का कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि श्रद्धालुओं ने ये जो एडवाइजरी है इस पर अमल नहीं किया, क्योंकि एक लार्ज स्केल पर एडवाइजरीज को लेकर भी कैंपेन चला है। चाहे शहर के आप किसी भी कोने में जाएं तो हर एक साइन बोर्ड पर आपको लिखा होगा हेल्पलाइन कहाँ है, आपको क्या क्या साथ रखना है, आपको किस तरह से चलना है। ये साइन बोर्ड्स भी बाजाबता उस ट्रेनिंग के अलावा भी लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु जो दो तीन दिन वहां रहते हैं या इस मौसम की वजह से जो काफी रुके पड़े भी हैं, वो भी हर जगह ये सुने देखें और बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि जब आप सफर पर निकलेंगे तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो ये सारी कैंपेन जहां अखबारों में, जहां पोस्टों के जरिए, जहां यहां अपने निवास स्थान में, और उसके अलावा खासतौर पर जो निवास स्थान में मेगाफोन पर भी खासतौर पर जाने से पहले यात्रियों को सारी चीजों का, सारी एडवाइजरीज को एक बार फिर याद कराया जाता है ताकि किसी भी तरह से कोई रिस्क श्रद्धालु ना ले और उनकी यात्रा सुखद रहे, आरामदेह रहे और उन्हें बिल्कुल एहसास ना हो कि हम कहीं बहुत खतरनाक पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये जो सफर है बहुत कठिन भी है, लेकिन उसके बावजूद उसको बहुत आसान बनाने के लिए प्रशासन, अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, रजिस्टर्ड जो इस श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ काम कर रही है, वो पूरी तरह से यात्रा से पहले भी और यात्रा के बीच भी इसको बेहतर बनाने की कोशिशों में लगे होते हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: ये थे जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहरा। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण, और यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी और ताजा अपडेट्स हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

0: जी श्रोताओं, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे रामबन के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन। जानते हैं कुछ नए अपडेट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी शुक्रिया। आज 19वां बैच हमारा इतवार को जम्मू से रवाना हुआ श्री अमरनाथ यात्रियों का, और ये इस वक्त बानहाल पहुंच चुका है, और इनका यहाँ पर जो नाश्ता वगैरह है बानहाल के लांबर ग्राउंड में वो हो रहा है। और आपको ये बता दें कि श्री पालतल के रास्ते से जो रिज्यूम यात्रा की गई है 6 रोज तक बंद रहने के बाद, और अभी पहलगाम के रास्ते पर मरम्मत वगैरह का काम की वजह से उस पर अभी ट्रैफिक, मतलब उस तरफ से यात्रा को नहीं छोड़ा जा रहा है। इस दौरान जो गाड़ियां थी, आज 160 गाड़ियों का ये काफिला था, और ये बानहाल अब से कुछ वक्त पहले पहुंच चुका है, और इनका सुबह नाश्ता वगैरह चल रहा है। तो जो अब तक भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से जो यात्रियों की तादाद जो कश्मीर पहुंची वो 1,30,503 हो गई है, जबकि 3.5 लाख से जायद यात्रियों ने अब तक पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। आज पहलगाम से जम्मू की तरफ भी 6 SRT बसेस को रवाना किया गया है, जिसमें साधु वगैरह कुछ सवार हैं, तो वो भी कुछ वक्त के बाद यहाँ बानहाल

0: पहुंचा चाहती हैं। इस दौरान जो कल कल श्री अमरनाथ यात्रा और जो टूरिस्ट से जो 3 बजे के बाद, जैसा कि हम रोज बोलते हैं कि 3 बजे के बाद बानहाल से कश्मीर की तरफ किसी भी गाड़ी को, यात्रा या टूरिस्ट गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होती, और इसी तरह 2 बजे के बाद रामबन से आगे इनको बढ़ने की इजाजत नहीं होती है। तो इसी जो बंदिश है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसके तहत रात को करीबन 1100 से ज्यादा टूरिस्ट और जो पिलग्रिम्स थे, यात्री थे, यहाँ बानहाल में रुके हुए थे लांबर ग्राउंड में, जहां पर उनके लिए खाने पीने का आला इंतजाम था और रहने का भी, और इसी तरह करीबन 600-700 यात्री, ऐसे 600-700 यात्री और टूरिस्ट को रामबंद के यात्रा निवास यानी चंद्रकूट के यात्रा निवास में रोका गया था कल रात को। मौसम आज धूप निकली है, करीबन अगर देखेंगे मजमुई तौर पर 8 दिन के बाद आज बिल्कुल साफ है, मतलब यानी आकाश बिल्कुल साफ है और धूप निकल आई हुई है, और जो ट्रैफिक है इस वक्त यात्रा का ट्रैफिक बढ़ रहा है, और 11:30 बजे बाद कश्मीर से जो मुसाफिर ट्रैफिक है, LMVs हैं, उन्हें जम्मू की तरफ 11:30 बजे से चलने की इजाजत होगी, और इस दौरान जो जम्मू से सुबह 7 बजे यानी यात्रा निकलने के करीबन 2-2.5 घंटे बाद जो LMVs हैं, मुसाफिर गाड़ियां हैं, वो इस वक्त छोड़ी गई हैं जम्मू से नगरोटा से 7 बजे से, और वो इस वक्त कश्मीर की तरफ बढ़ रही हैं। और मजमुई तौर पर जो हाईवे को कल फिर डैमेज हुआ था, कल मतलब सुबह खोला गया, फिर शाम को फिर हाईवे बंद हो गई, बहुत बड़ा स्लाइड आया, लेकिन पार्शली से रेस्टोर किया गया है, एक ट्यूब को खोला गया है और उसी से ट्रैफिक गुजारा जा रहा है। तो फिलहाल बाकी जगहों पर जो वहां पर जो बहुत बड़ा स्लाइड है रामसू के इलाके में, उसे क्लियर किया जा रहा है, लेकिन जो यात्रा और बाकी ट्रैफिक को के लिए एक ट्यूब खुली है, उससे इस ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। और फिलहाल जो यहाँ पर यात्रा ग्राउंड लांबर में इनके लिए खाने पीने के इंतजाम है, इसके बाद इस यात्रा को कश्मीर की सूबाई इंतजामिया जो है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके हवाले करके इसे बालतल के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया जाएगा। जी
1: हमें ये बता दीजिए कि जो ट्रैफिक है वो वन वे है या टू वे?
0: ट्रैफिक अब हमारा पास 4 लेन हाईवे है, अब 4 लेन में से एक लेन जब खराब हो जाती, यानी एक लेन पर दो तरफ का ट्रैफिक चलाया जा सकता है, उसी तरह का यानी इसे वहां पर वन वे ही है, जहां पर हम कहेंगे यहाँ जो इफेक्टेड एरियाज हैं, जैसे ये रामसू के पास, वहां पर इफेक्टेड है, लेकिन ट्रैफिक को दोनों तरफ से छोड़ा जाएगा, जो पुलिस ट्रैफिक का एडवाइजरी है ट्रैफिक पुलिस का, तो उसके मुताबिक जो रूटीन का ट्रैफिक है वो चलाया जाएगा। कल तो बहुत बड़ा स्लाइड था, जिससे लग रहा था कि टाइम लगेगा, लेकिन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से अच्छा काम किया गया, एकदम मशीनरी प्रेस की गई, एडमिनिस्ट्रेशन वहां थी, पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस थी, तो तमाम की कोशिशों से एक मतलब पूरी कार्रवाई की गई, और शाम करीबन 7-7.5 बजे तक यहां पर ट्रैफिक को थ्रो किया गया। हालांकि इससे पहले जो सुबह यात्रा निकल चुकी थी, यात्रा का जो कल यात्रा आई थी, कोई असर नहीं पड़ा, उसी तरह आज भी कोई असर नहीं पड़ा, तो वहां पर ट्रैफिक वन वे के लिए है, यानी एक ही लेन से दोनों तरफ के ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। जो रूटीन में होता है कि अलग अलग 2 लेन से ट्रैफिक चलता है, 2 ट्यूब से ट्रैफिक चलता है नेशनल हाईवे NH-44 के, जो 4 लेन आ रहा है इस इलाके में, मैक्सिमम 4 लेन है, अभी कुछ 10 किलोमीटर का हिस्सा रामबन में, करीबन 16 किलोमीटर का हिस्सा जो अभी 4 लेन नहीं हुआ, वहां टनलिंग वगैरह का काम किया जा रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर, और ट्रैफिक को जो मामूल की तरह चलाया जाएगा, चाहे ये यात्रा के बाद जो अब बाकी जो मुसाफिर ट्रैफिक और ट्रक्स वगैरह आज कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन इनको मतलब अल्टरनेट डे पर चलाया जाता है, तो वो मामूल की तरह चलेगा, उसका मतलब हाईवे की बंदिश जो एक ट्यूब खराब है उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस दौरान एक या श्रोताओं को बता दें कि एक यात्रा बस जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जो आज जो यात्रा में शामिल थी, उसका ब्रेक डाउन वो खराब हुई है, उसकी वायरिंग वगैरह शॉर्ट हुई है कुछ यहाँ राम बानहाल के चमलवास एरिया में, वो उसे मतलब वहां से जो यात्री, क्योंकि बसें स्पेयर रखी गई होती है, बैकअप बसें रखी गई होती है, ताकि अगर किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पूरी तौर पर तब्दील किया गया, जो उसमें यात्री थे वो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके कश्मीर की तरफ लिए जा रहे हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: ये थे रामबन से हमारे संवाददाता।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन के आई आर के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता एस तारिक अनंतनाग से जुड़े हैं। आपका तारिक साहब हार्दिक स्वागत है।
1: प्रियम इंद्र
2: परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए चंद्रवाली से पवित्र गोपाल तक प्राचीन मार्ग पर अभिषेक मरम्मत और बहाली के काम जारी है। इसके चलते इस मार्ग को फिलहाल यात्रा के लिए आर्थिक तौर पर बंद रखा गया है। रीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने अपने एक बयान में कहा है कि यात्रा को जारी रखने के लिए बालतल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संगम दर्शन का पुण्य हासिल कर चुके हैं। आज सुबह शिशनाग और पंचतरणी में रात का विश्राम करने वाले 4,231 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा की ओर अपनी पैदल यात्रा आरंभित कर दी है। इनमें 3,240 पुरुष, 906 महिलाएं, 79 साधु और 16 साधवियां शामिल हैं। यात्रा प्रशासन ने हर एक किलोमीटर पर बारिश से बचाव के लिए शेल्टर और टेंट पहले ही स्थापित कर रखे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 166 छोटी बड़ी वाहनों पर मुश्तमिल 4,474 श्रद्धालुओं का एक नया जत्था बालतल मार्ग की ओर रवाना हो चुका है। ये जत्था आज तकरीबन 11 बजे काजीगुंड ट्रांजिट कैंप पहुंचने के बाद बालतल के ओर आगे रवाना हो जाएगा। इनमें 3,531 पुरुष, 785 महिलाएं, 10 बालक, 96 साधु और 51 साधवियां शामिल है और एक ट्रांसजेंडर भी। जैसा कि पहले ही बताया चुका हूं कि पहलगाम के प्राचीन मार्ग से आज भी किसी श्रद्धालु को रवाना नहीं किया गया है। मौसम की बात करें तो मौसम के बारे में आपको सूचित कर दूं कि पहलगाम से पवित्र अमरनाथ गुफा तक यात्रा मार्ग पर आज आमतौर पर अवलालु मौसम रहने की संभावना है। पवित्र गुफा के आसपास अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना जाहिर की गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त तापमान लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड है जो दोपहर तक 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में हल्की वर्षा और वक्फे से बूंदाबांदी होने की भी संभावना है जबकि दोपहर के बाद कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। तो यात्रा प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से नवयोग टनल काजीगुंड से लेकर पहलगाम तक 3 हिसार वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित और वातावरण में अपनी पवित्र यात्रा संपन्न कर सकें। तो इसी आशा है कि सभी श्रद्धालुओं की ये पवित्र यात्रा

0: Ramun ol सुरक्षित रहे, ये हमारी दुआ है। जी
1: जी पहलगाम मार्ग कब तक यात्रियों के लिए फिर से अनुकूल होगा?
0: जहां तक मुझे इतला मिली है, जो गैर जराया है, जो अभी उसको मुसद्दिक नहीं कह सकते हैं, तस्दुक नहीं, इसको हम फाइनल नहीं कह सकते, लेकिन मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है, 6 दिन तक ये जो सरकारी तौर पे जो अभी वहां मरम्मत का काम चल रहा है ट्रैक को, बीआरओज, बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट, R&B, जो भी उस विभाग के लिए जरूरत है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वो उसको यात्रा ट्रैक को पूरा सिक्योर कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं। तो 6 दिन तक लगभग पहलगाम मार्ग को बंद कर दिया जाएगा, 6 दिन के बाद शायद फिर दोबारा उसको खोल दिया जाएगा, ये मुझे जाती इंफॉर्मेशन है। लेकिन सरकारी तौर पे कल भी ड्यूकाम साहब ने, जो अंशुल गर्ग साहब ने कल अपने बयान में कहा है कि फिलहाल पहलगाम की जो ट्रैक को मरम्मत की जा रही है, तो इसके हवाले से फिलहाल यात्रा को रोक दिया जाएगा।
1: जी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो रास्ता भी बहाल हो। और आपका
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
0: शुक्रिया।
1: ये थे अनंतनाग से हमारे संवाददाता S. तारिक। बने रहिए इस विशेष प्रसारण के संग।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालदल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, हम लगातार अपने संवाददाताओं और संबंधित अधिकारियों से संपर्क में हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा अपडेट्स हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप समाचार सुनिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। जैसा कि हम आपसे कह चुके हैं कि हम लगातार अपने संवाददाताओं से संपर्क में हैं, ताकि हम महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचाते रहें। और अभी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं रहीम रिजवान साहब, हमारे संवाददाता गांधरबल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आपका भी।
2: क्या कुछ अपडेट्स है मौसम के हवाले से और क्या सूरत हाल है बालतल मार्ग के?
3: सबसे पहले हम श्रोताओं को बालतल के वातावरण एवं मौसम की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना साझा करते हैं। श्रोताओं, बालतल के पूरे क्षेत्र में मौसम की स्थिति खराब बनी हुई है। आकाश पर घने बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में वर्षा भी होती है। तहम ऐसे मौसम में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज बालतल मुख्य मार्ग से सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालु आज सुबह सवेरे से ही पूरे उत्साह तथा भक्तिभाव से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस बीच बालतल बेस कैंप से आज सुबह 4 बजे से 8 बजे तक 13,294 यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन श्रद्धालु में 9,061 पुरुष, 3,988 महिलाएं, 47 बालक बालिका, 23 साधु एवं 175 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। यात्रियों में पवित्र गुफा जाने की काफी उत्साह पाई जाती है। वह धार्मिक जोशो जज्बे के साथ जय जयकारे के नारे बुलंद करते हुए पैदल डांडी एवं घोड़ों पर सवार होकर गुफा की तरफ निकल पड़े। प्रशासन के द्वारा उन्हें बार बार यह निवेदन की जाती है कि वह सफर के दौरान गर्म कपड़े, रेनकोट, लाठी, पानी की बोतलें एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं साथ रखें। पवित्र सफर आराम से करें, संयम एवं धीरज से काम लें, क्योंकि ऊंचे पर्वतों के बीच सफर के दौरान अक्सर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ताहम चिकित्सा विभाग ने हर पड़ाव पर अपने चिकित्सा केंद्र कायम किए हैं, जहां तमाम आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध रखी गई हैं। इसके साथ साथ आपकी सहायता के लिए सुरक्षा कर्मियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को जगह जगह चाकू चौबंद रखा गया है, जो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। इधर सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीती रात 10 बजे तक 4,053 श्रद्धालु दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। देश के विभिन्न भागों से घाटी आगमन होने वाले इन श्रद्धालु ने पवित्र गुफा जाकर माथा टेका, पूजा पाठ में शिरकत करके देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना की तथा बाबा बर्फानी के दर्शन से प्राप्त हुए। दर्शन करके सुरक्षित बालतल वापस पहुंचने वाले इन यात्रियों में 2,430 पुरुष, 1,227 महिलाएं, 150 बालक बालिका, 10 साधु, 3 ट्रांसजेंडर एवं 233 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। दर्शन से प्राप्त हुए श्रद्धालु ने इस वर्ष प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं पर इत्मीनान का इजहार करते हुए आकाशवाणी को बताया कि जिला प्रशासन गांधरबल ने बालतल मुख्य मार्ग से यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जबकि सुरक्षा के भी

0: कड़े प्रबंध किए गए हैं, जिसको लेकर यात्री बेहद संतोष व्यक्त कर रहे हैं। इधर प्रशासन के द्वारा यात्रियों को बार बार यह सूचना दी जाती है कि वह पवित्र सफर आराम से करें तथा प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। चिंता ना करें, क्योंकि प्रशासन आपकी सहायता के लिए 24 घंटे यहां दस्तियाब हैं। श्रोताओं, हम भी आशा करते हैं कि आपकी यह तीर्थ यात्रा सुखद तरीके पर संपूर्ण हो सके। जी मैम
1: जी, और कोई ऐसी सूचना है जो यात्रियों के लिए है, या कोई ऐसी एडवाइजरी जो प्रशासन द्वारा जारी की गई है?
0: प्रशासन के द्वारा इसके साथ साथ और एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि वह पंजीकरण के बगैर सफर ना करें। और हालांकि यहाँ पे जो ट्रांजिट कैंप मणिगांव है, या ट्रांजिट कैंप शादीपुरा, या बेस कैंप बालतल में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध रखी गई हैं जहाँ तत्काल रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाती है, लेकिन यहाँ पहुँच के यात्रियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जरा अपने आधार कार्ड या उनके अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जेरोक्स कॉपियां यहाँ देन जमा करनी पड़ती है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान पंजीकरण करने के बाद ही उन्हें RFID कार्ड्स फ्राहम किए जाते हैं, और RFID कार्ड्स के बगैर वो पवित्र गुफा नहीं जा सकते हैं दर्शन के लिए। लिहाजा उन्हें बार बार ये सूचना दी जाती है कि वह पंजीकरण करके ही यहाँ सफर करें, घाटी आगमन हो जाए तभी तो उनको पवित्र गुफा जाने की अनुमति दी जाएगी। और इसके साथ साथ जिस दिन उनकी बारी आएगी, यानी जो डेट उनके लिए मुकरर किया गया है, वह इसी दिन सफर करें, इससे पहले यहाँ सफर ना करें, क्योंकि भीड़ भाड़ यहाँ पे होती है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि पहलगाम नुनवन बेस कैंप से जो यात्रा है उसको फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ जो यात्रा ट्रैक है उसमें खराबी हुई है, तो उसके लिए वहाँ मरम्मत तलब हुआ है, तो वहाँ काम जारी है। लिहाजा जो भी यात्री हैं उनको फिलहाल बालतल मुखी मार्ग से पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाती है। लिहाजा यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए बार बार उन्हें यह सूचना दी जाती है कि वो पंजीकरण करके ही यहाँ सफर करें, ताकि उन्हें बआसानी गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे संपर्क में बने रहेंगे।
0: धन्यवाद आपका।
1: ये थे गांदरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। बने रहिए हमारे संग।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें, और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
2: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। आपको याद दिलाते चले, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा का 19वां जत्था जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है। प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल 166 छोटे बड़े वाहनों में 4,474 श्रद्धालु रवाना हुए हैं।

इनमें 3,531 पुरुष, 785 महिलाएं, 10 बच्चे, 96 साधु, 51 साध्वियां और एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल हैं। यात्री बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की यात्रा करेंगे, जबकि पहलगाम मार्ग बारिश के कारण सड़क की स्थिति अनुकूल न होने के चलते फिलहाल बंद है। यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें। हमें सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की प्रार्थना करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, ताज़ा सूचना के अनुसार अभी तक 671 तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 479 पुरुष, 162 महिलाएं, 11 बच्चे और 19 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए दो प्रमुख मार्ग हैं, पहलगाम मार्ग और बालतल मार्ग। दोनों ही मार्गों की अपनी अलग पहचान और विशेषता है। पहलगाम मार्ग लगभग 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक मार्ग है। इस यात्रा की शुरुआत पहलगाम बेस कैंप से होती है। यात्री सबसे पहले चंदनवाड़ी पहुंचते हैं। इसके बाद कठिन चढ़ाइयों को पार करते हुए पिसू टॉप और जोजी बल आता है। आगे बढ़ने पर शेषनाग पड़ता है, जो अपनी नीली झील और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके बाद यात्री महागुना स्टॉप पहुंचते हैं, जो लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर यात्रा का सबसे ऊंचा स्थान है। फिर पंचतरणी आता है, जहां अधिकतर श्रद्धालु विश्राम करते हैं। इसके बाद संगम से बालतल मार्ग मिल जाता है और फिर पवित्र गुफा तक यात्रा पूरी होती है। बालतल मार्ग लगभग 14 किलोमीटर लंबा है और ये छोटा होने के कारण कम समय में यात्रा पूरी करने का अवसर देता है। इस मार्ग की शुरुआत बालतल बेस कैंप से होती है। सबसे पहले दुमेल आता है, जहां से यात्रा का प्रवेश नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद बरारी मार्ग और फिर संगम पहुंचते हैं, जहां ये मार्ग पहलगाम मार्ग से मिल जाता है। संगम से कुछ ही दूरी पर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा स्थित है। दोनों ही मार्गों पर प्रकृति की अनुपम सुंदरता के साथ साथ श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना ही सुरक्षित और सफल यात्रा की कुंजी है। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चले, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा का 19वां जत्था जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है। प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल 166 छोटे बड़े वाहनों में 4,474 श्रद्धालु रवाना हुए हैं। इनमें 3,531 पुरुष, 785 महिलाएं, 10 बच्चे, 96 साधु, 51 साधुयां और एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल है। यात्री बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की यात्रा करेंगे, जबकि पहलगाम मार्ग बारिश के कारण सड़क की स्थिति अनुकूल ना होने के चलते फिलहाल बंद है। यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा करें। हम सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की प्रार्थना करते हैं। आप सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की

शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस पर आप अपने प्रश्न, विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप अपने अनुभव हमारे साथ हमारे ईमेल एड्रेस पे भी साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। बने रहिए हमारे साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: जी श्रोताओं, फोन लाइन पर हमारे संवाददाता श्रीनगर से इमरान नायकू साहब जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत शुक्रिया।
0: क्या कुछ अपडेट्स हैं मौसम के हवाले से और यातायात के हवाले से?
1: जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि वादी कश्मीर में पिछले कई दिनों से मौसलाधार बारिशें हो रही है। अलबत्ता आज सुबह से श्रीनगर शहर में जो है मौसम थोड़ा सा साजगार हुआ है। हालांकि अभी बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश रुक चुकी है। जिस तरह से कल पूरे दिन यहाँ श्रीनगर शहर में बारिश हुई, हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही कहा है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से जो है हल्की बारिशें होंगी और बीच बीच में मौसम की बेहतरी भी होगी और साथ ही बारिशों का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में मौसम में बेहतरी आई है। आज सुबह से ही कल पूरा दिन हमने देखा कि बारिश किस तरह से हुई और शहर में जो नॉर्मल लाइफ है वो कैसे डिसरप्ट हुई। और इसके अलावा जो अमरनाथ यात्री है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो पहलगाम एक्सेस है वहां पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है और सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कहा गया है कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा का जो पहलगाम एक्सेस है वहां पे जिया रास्ता जो है वहां पे टेम्पररी फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन जो बेस कैंप है बालतल की तरफ जाने वाला, वहां से जो रास्ता है वो ओपन है, उसके लिए अमरनाथ जी यात्रियों को रवाना किया गया है। और साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की जो है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग कल शाम को श्रीनगर में ली और उस मीटिंग में जो कैंप डायरेक्टर्स हैं, सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस रेस्टोरेशन वर्क के सिलसिले में एलजी साहब ने रिव्यू लिया और तमाम जो मीटिंग में लोग थे, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, इसके अलावा एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड एसएसपी अनंतनाग और इसके अलावा एसएसपी श्रीनगर, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, एसएसपी गांधरबल।

0: जितने भी कैंप डायरेक्टर्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस, श्राइन बोर्ड, बीआरओ, हेल्थ, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स के आला अधिकारी थे वो उस मीटिंग में मौजूद थे। हालांकि ये वर्चुअल मोड पर ये मीटिंग थी और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सारे जो ट्रैक्स डैमेज हुए हैं उसका एसेस किया है और उन्होंने सेफ्टी रेलिंग्स और दीगर जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को डायरेक्शन दी है कि प्रायोरिटी पे उन जो वल्नरेबल ज़ोन्स है उनको जो है दोबारा से बेहतर किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पिलग्रिम्स की या जो अमरनाथ यात्री की जो सेफ्टी है उनको एंश्योर किया जाए। उन्होंने डायरेक्शंस दी कि जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स है को डिप्लॉय किया जाए और इसके अलावा उन्होंने रियल टाइम जो वेदर अपडेट्स है उसको भी उस पर भी जोर दिया है ताकि यात्री जो है वो प्रोएक्टिवली सारी अपडेट्स हासिल कर सके। एलजी साहब ने इसके अलावा ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो एसेंशियल सर्विसेज जिसमें पावर, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और जितनी भी बाकी फैसिलिटीज है उन्हें फुली ऑपरेशनल रखे। और हम देख रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोएक्टिव है, राउंड क्लॉक वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बस उम्मीद यह है कि मौसम बेहतर हो और बहुत जल्द जो पहलगाम एक्सेस का जो ट्रैक है उस पे जो मेंटेनेंस का काम है वो मुकम्मल हो जाए और दोनों रास्ते जो है ओपन हो जाए। तो फिलहाल अमरनाथ यात्री जो है यहाँ पहुंच रहे हैं और उन्हें यहाँ से अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना किया जा रहा है।
1: जी इमरान साहब, अगर जहलम की फ्लड डिक्लेरेशन मार्क की बात करें तो क्या कुछ अपडेट्स हैं?
0: अभी देखिए जैसे मैंने कहा कि पिछले 3 दिनों से काफी बारिश हुई और इस बारिश की वजह से लोग भी थोड़ा सा पैनिक हुए थे कि ये खदशा था कि शायद जहलम में जो वाटर की लेवल है वो भर जाएगी और सैलाबी सूरत हाल या फ्लड लाइक सिचुएशन जैसे देखने को मिल रही थी। तहम जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है या फ्लड डिपार्टमेंट है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उनका जो उनकी जो मैन एंड मशीनरी है वो सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक जो है वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, वो चाहे श्रीनगर में जहाँ पर ये जो फ्लड के गेट्स है वहां पे हम देखें या बाकी जगहों पर देखें। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मौसम की बेहतरी के साथ ही जो वाटर लेवल है फ्लड जो फ्लड की सिचुएशन है उसको लेके कोई परेशानी नहीं है। और जैसे मैंने खुद कल चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल कश्मीर से डिटेल्ड में इस बारे में बात की थी और उनका भी यही मानना है कि हर जगह पर उनके जो उनका जो अमला है उनके जो लोग हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। अलबत्ता लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये चीज इस चीज को लेके अभी यहाँ जो लोग हैं वो काफी तनकीद कर रहे हैं इस महकमे के ऊपर के 2014 के जो तबाहकुन सैलाब के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीर को एक परमानेंट सैलाब से बचाने के लिए तकरीबन 2000 से ज्यादा करोड़ रुपए के 2 बड़े फ्लड मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट्स थे वो मंजूर किए थे, अप्रूव किए थे, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी वादी कश्मीर अब भी बारिश के दौरान एक सैलाब खतरात से दो चार है। यानी कि जब भी बारिश होती है तो एक फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है और इस पे तनकीद तो की जा रही है बट एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं है और ना ही लोगों को पैनिक होने की जरूरत है।
1: ऐसी कोई सूचना जो प्रशासन द्वारा जारी की गई है या कोई ऐसी एडवाइजरी जो यात्रियों को फॉलो करनी है?
0: बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि जब से यात्रा शुरू हुई है तब से जितनी भी हमारी अलग अलग जो महकमे हैं खासकर श्राइन बोर्ड अपने तरीके से यात्रियों को एडवाइजरी दे रहे हैं। इसके अलावा डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी वो अलग एडवाइजरीज पेश कर रहे हैं और ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो वक्तन फौक्तन अमरनाथ जी यात्रियों को यात्रा के रिलेटेड एडवाइजरीज पेश की जा रही है उसे कहा जा रहा है कि वो उन एडवाइजरीज को फॉलो करें। और खासकर जो यात्री यहाँ यात्रा के लिए आ रहे हैं वो सबसे पहले अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो एंश्योर करें और विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ जैसे रिसेंटली एक डिटेल्ड गाइडलाइन भी यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दी गई थी। और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जब से ये बारिश वगैरह का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ तो इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ हर तरह से गवर्नमेंट मॉनिटर भी कर रही है, और इसके अलावा रीजनल सतह पर लोगों से कहा गया है कि वो कंट्रोल रूम्स डिस्ट्रिक्ट्स में जो कायम किए गए हैं उनके साथ जो है राबता में रहे, और खासकर जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और उनमें उसमें कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर 01942744003, दोबारा से मैं दोहराऊंगा, 01942744003 पर कांटेक्ट करें किसी भी असिस्टेंस के लिए, और इसके अलावा जो श्राइन बोर्ड की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके साथ भी रब्ता करें, उसके अलावा जहां पर भी ये कैंप्स कायम किए गए हैं वहां कैंप डायरेक्टर्स के पास भी असिस्टेंस डेस्क कायम किए गए हैं और वहां से भी वो रब्ता कर सकते हैं ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई उनको असिस्टेंस की जरूरत हो उसको फॉलो करें। इन द मीन टाइम जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है जे एंड के ट्रैफिक, उनकी तरफ से भी हर शाम को ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं और उसमें भी अमरनाथ जी यात्रियों को प्रॉपर ट्रैफिक प्लान या आम लोगों को भी ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया जाता है ताकि उस एडवाइजरी को फॉलो करके वो अपना जो विजिट है वो एंश्योर करे। जैसे कि कल शाम को श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी आई थी जिसमें किश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग के लिए और इसके अलावा लाइट मोटर व्हीकल्स, प्राइवेट मोटर व्हीकल्स या बाकी जितने भी व्हीकल्स हैं उनके लिए एक अलग एडवाइजरी जारी की गई थी, और ये हर शाम को एडवाइजरी ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से की जा रही है, और ये जो एडवाइजरी है ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स जे एन के जम्मू श्रीनगर से शाया होती आती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान साहब इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये थे श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नायकू। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालदल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
2: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 144-64 पे कॉल करें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: करके।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, ताज़ा सूचना के अनुसार अभी तक 1973 तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 1349 पुरुष, 554 महिलाएं, 31 बच्चे और 39 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। आप सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।

85 महिलाएं, 10 बच्चे, 96 साधु, 51 साधवी और एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल हैं। यात्री बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की यात्रा करेंगे, जबकि पहलगाम मार्ग बारिश के कारण सड़क की स्थिति अनुकूल न होने के चलते फिलहाल बंद है। यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, ताज़ा सूचना के अनुसार अभी तक 1973 तीर्थयात्रियों ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 1349 पुरुष, 554 महिलाएं, 31 बच्चे और 39 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष।

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट।

यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घास निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश

का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए।
गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ा

आया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगु देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगु भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए

हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश
नेशनल

नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मन
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी।
3: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, ताज़ा सूचना के अनुसार अभी तक 3,282 तीर्थयात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 2,266 पुरुष, 904 महिलाएं, 56 बच्चे, 2 साधु, 54 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चले, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा का 19वां जत्था जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है। प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल 166 छोटे बड़े वाहनों में 4,474 श्रद्धालु रवाना हुए हैं। इनमें 3,531 पुरुष, 785 महिलाएं, 10 बच्चे, 96 साधु, 51 साध्वियां और एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल हैं। यात्री बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की यात्रा करेंगे, जबकि पहलगाम मार्ग बारिश के कारण सड़क की स्थिति अनुकूल ना होने के चलते फिलहाल बंद है। यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते

0: हुए प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा करें। हम सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की प्रार्थना करते हैं। सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।
1: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बाल दल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी श्रीनगर के बाल दल स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस पर आप अपने प्रश्न, विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारे साथ हमारे ईमेल आईडी पर भी जुड़ सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akashwanibaltal@gmail.com। ईमेल एक बार फिर सुने, akashwanibaltal@gmail.com। प्रिय श्रद्धालुओं, श्री अमरनाथ जी की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और समर्पण की एक अद्भुत परीक्षा है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवाएं इस पवित्र यात्रा को और भी यादगार बना देती हैं। यात्रा के दौरान मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। अपनी गति संतुलित रखें और प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें। याद रखिए, ये यात्रा मंजिल से ज्यादा उस आस्था और अनुभव का नाम है जो हर कदम पर आपको आध्यात्मिक शक्ति और नई ऊर्जा से भर देता है। कश्मीर की मेहमाननवाजी, प्रकृति की अनुपम सुंदरता और बाबा बर्फानी के दर्शन की आस ही इस यात्रा को यादगार बनाती है। विश्वास बनाए रखिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए और मुस्कुराहट के साथ अपनी यात्रा जारी रखिए। आकाशवाणी की ओर से हम सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुखद और मंगलमय यात्रा की हार्दिक प्रार्थना करते हैं। बने रहिए हमारे साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: जय बाबा बर्फानी।
3: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।
0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करता।

0: श्रोताओं, ताज़ा सूचना के अनुसार अभी तक 3,282 तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 2,266 पुरुष, 904 महिलाएं, 56 बच्चे, 2 साधु और 54 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। बने रहिए हमारे साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान

उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

प्रिय श्रद्धालु, यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा करें। हम सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की प्रार्थना करते हैं। आपको बताते चले, हम लगातार अपने संवाददाताओं और संबंधित अधिकारियों से संपर्क में हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा अपडेट्स हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आइए समाचार सुनते हैं।

0: श्रोताओं हमारे साथ बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष श्री अमरनाथ जी यात्रा प्रसारण में।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: India, which began on the 14th of July from the National War Memorial in Delhi. This motorcycle rally will reach the Kargil War Memorial in Dras. Its message is one right, one nation, one salute. Mr. Modi said that this journey reminds everyone that the sacrifice made for the nation can never be forgotten. Mr. Modi said, India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
1: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS Mahendragiri शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। दो तीन दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
0: Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. He elaborated that it is India's first rocket developed by the private sector. Mr. Modi praised young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: Catch the Rain ka sandesh bahut seedha hai. जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल डीटीएच और हमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। मैं आपकी उद्घोष का पजमान फेरोज आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी शाम के 6 बजे तक। श्रोताओं, आपको बता दें आज दोपहर 12 बजे तक का दर्शन अपडेट हमारे पास आ चुका है जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आज दोपहर 12 बजे तक 4642 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 3253, महिला 1234, बालक 76, साधु 5, साध्वी 0, ट्रांसजेंडर 0, सुरक्षा कर्मचारी 74। ऐसे ही कुल मिला के जो संख्या है 4000

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं आए आपको दिल्ली लिए चलेंगे जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।
1: गृह लक्ष्मी, हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र पर सनल से बोल रहे हैं, मीडियम व्यू 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
3: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
2: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
3: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
2: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
3: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
2: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
3: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
2: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित

0: की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
2: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। दो तीन दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
1: The Prime Minister said, every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. He elaborated that it is India's first rocket developed by the private sector. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July. In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said, every Indian is cheering for the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago. The Prime Minister exuded pride that Indian youth have achieved remarkable feats in sports events recently. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honour the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. On the occasion, the President, the Vice President and the Prime Minister paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defence of the motherland. In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today paid homage to the brave hearts of the Kargil War at the Kargil War Memorial in Dras. Addressing the gathering, Rajnath Singh said the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valour of Indian soldiers. The Indian Embassy in Ukraine has said that it is closely monitoring the situation following the incident involving the cargo vessel MV Aegean Ragnar, which was struck at the port of Odessa yesterday. In a social

0: Social media post, the embassy said two out of four Indian nationals on board have been confirmed safe, while information about the other two is still awaited. External Affairs Ministry today issued an advisory urging Indian nationals intending to undertake employment on commercial vessels operating in or transiting Black Sea region to carefully assess the prevailing security risks before accepting such assignments. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. And that is the end of this news bulletin.
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, सभी यात्रियों के लिए हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सुखद रहे। सभी यात्रियों से निवेदन है, सफर के दौरान सभी नियमों का पालन करें, प्रशासन और सुरक्षा कर्मचारियों के निर्देशों का सम्मान करें और अपने सामान का ध्यान रखें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz और FM पहलगाम 100.1 MHz। क्षण क्षण के अपडेट्स लेके हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो 1 बजे का अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आज 1 बजे तक 6,606 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,273, महिला 1,604, बालक 91, साधु 7, सुरक्षा कर्मचारी 91। कुल मिला के जो संख्या बनती है वो है 6,606 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, आइए आपको एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार समाप्त करेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जाबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाक्वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे असवद के खत्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलहूज़ ख़ातिर रखें। और भारतीय मौसमियात महकमे ने वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर ये कहते हुए मुल्क के जाबाजों को खराज अकीदत पेश किया है कि खा ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हों या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई की तारीख एक ऐसा दिन है जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: वजीर आजम ने कहा कि इस साल एक खुसूसी शौर्य विजय यात्रा का एहतमाम किया गया है, जो दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से 14 जुलाई को शुरू हुई। ये मोटरसाइकिल रैली द्रास में करगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी। इसका पैगाम है, एक सफर, एक मुल्क, एक सलाम। जनाब मोदी ने कहा कि ये सफर सभी को इस बात की याद दिलाता है कि मुल्क के लिए की गई कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने कहा कि भारत लगातार अपनी तकनीकी सलाहियत को मुस्तहकम बना रहा है। उन्होंने भारतीय बहरिया में INS महेंद्र गिरी को हाल ही में शामिल किए जाने का तस्करा किया।
2: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
1: वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता इतवार को विक्रम 1 के कामयाब लॉन्च के बाद हर भारतीय फख्र से सरशार हो गया। जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत का ऐसा पहला रॉकेट है जिसे प्राइवेट शोबे ने तैयार किया है। उन्होंने काबिले कद्र हुनरमंदी, जज्बे और सब्र तहमुल का मुजाहरा करने पर नौजवान इख्तराकारों की सताइश की। कैच द रेन मुहिम के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 4 जुलाई से पूरे मुल्क में एक खसूसी मुहिम चल रही है।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान

0: وصول کرتے وقت موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹر نون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دا مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to country scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who have been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defense production, defense exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
2: Catch the rain का संदेश बहुत सीधा है। जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
1: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
2: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास

0: आदमी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी

0: को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में

0: आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz और FM पहलगाम 100.1 MHz। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन के द्वारा। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9596990954 9596990954। इसके अलावा हमारे टोल फ्री नंबर्स भी है। जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर है 1800 180 7198 1800 180 7198। श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर है 1800 180 7199 1800 180 7199। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कीजिए akashvanibaltal@gmail.com akashvanibaltal@gmail.com। शनशन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। अभी हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भगवती नगर जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब साहब। जी जावेद साहब
1: जी, पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा के जो श्रद्धालु हैं, आज बदले मौसम और सूर्य देवता के खुले दर्शन से जहां खुश नजर आ रहे हैं, यहां वहीं मौसम के बदले मिजाज से बाबा बर्फानी की दर्शन की आस्था और उम्मीद उन्हें और पुख्ता नजर आ रही है। श्रद्धालु यहां पहले निवास स्थान भगवती नगर में जहां बाबा बर्फानी की तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं आज मौसम के बदले मिजाज से ट्रांजिट कैंपों से बाहर आकर भी यहाँ के मुख्य बाजारों, रेस्टोरेंट, ढाबों में भी दिखाई दे रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का शहर में घूमने से मानो आज शहर में जिंदगी दोबारा लौट आई हो। हालांकि आज रविवार है, दुकानें मुख्य बाजारों में भी कुछ कुछ बंद हैं, कुछ खुली हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा कम जरूर है रश बाजारों में, लेकिन खास तौर पर मौसम के बदले मिजाज की वजह से आज न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि श्रद्धालु भी यहाँ के बाजारों, यहाँ के रेस्टोरेंट और ढाबों में भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक बदले मौसम के इस मिजाज से एक उम्मीद और जो श्रद्धालु हालांकि यहाँ पिछले दो दिनों से लगातार निवास स्थान से पवित्र गुफा की तरफ बराबर रवाना हो रहे हैं, लेकिन बदले मौसम ने भी एक अच्छा मूड जो क्रिएट किया है वो एक बहुत अच्छी बात सामने आई है, क्योंकि सूर्य देवता के दर्शन भी पिछले लगभग एक हफ्ते से जम्मू में बहुत कम देखने को मिले हैं। और इसी दौरान यहाँ जो दर्शन कर वापस लौट रहे हैं श्रद्धालु, वो यहाँ के रेलवे स्टेशन पर मुख्य तौर

0: तौर पर देखे जा सकते हैं। वो अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं और खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मौका मिला है जो लगातार जो तीर्थ यात्रा न सिर्फ यहाँ से रवाना हो रही थी पिछले 2 दिन से, बल्कि वहां से तीर्थ यात्री जो दर्शन कर वापस लौट रहे हैं वो भी यहाँ के रेलवे स्टेशन पर देखे जा सकते हैं, जो अपने घरों को जाने की तैयारी में है और अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। तो वही यहाँ ट्रांजिट कैंप्स में भी ठहरे श्रद्धालुओं को पहले निवास स्थान भगवती नगर पहुंचने और फिर यहाँ से पवित्र गुफा की तरफ जाने का भी सौभाग्य उन्हें मिलेगा जो पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी एक ट्रांजिट कैंप रखा गया है रेलवे स्टेशन के नजदीक, जिसमें जो भी तीर्थ यात्री यहाँ पहुंच रहा है उसे पहले ट्रांजिट कैंप में रखा जाता है। जब तक वो सारी प्रक्रिया को पूरी नहीं करता उसके बाद ही निवास स्थान भगवती नगर भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिट कैंप्स में ठहरे श्रद्धालु हैं वो निवास स्थान भगवती नगर पहले पहुंचते हैं और फिर उसके बाद पवित्र गुफा की तरफ जाने का उन्हें सौभाग्य मिलता है। तो आज भी मैं बताऊं तो यहाँ निवास स्थान भगवती नगर से 4,400 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। कल भी लगभग 6,000 से ज्यादा रवाना हुए थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार तीर्थ यात्रा यहाँ से सिर्फ बालटाल के मार्ग की तरफ रवाना हो रही है। तो फिलहाल पहलगाम का प्राचीन मार्ग यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए बंद है, लेकिन इस दौरान मौसम जैसे ही बेहतर होगा तो इजाजत मिल जाएगी पहलगाम के प्राचीन मार्ग की तरफ भी। तो इस दौरान मौसम विभाग की सूचनाओं के अनुसार फिलहाल 2 दिन तक यहाँ जो मौसम है वो स्थिर रहेगा, लेकिन 28 तारीख से एक बार फिर एक भविष्यवाणी आई है। सूचनाओं के अनुसार 28 से लेकर 30 तारीख तक जम्मू में मौसलाधार बारिश होने के आसार हैं, लेकिन ऐसा अक्सर सावन में होता रहता है और ये इससे पूरी तरह से श्रद्धालु भी अवगत हैं, क्योंकि सावन का महीना है, मौसम एकदम चेंज भी होता है, बदलता भी है, सूर्य देवता के भी दर्शन होते हैं लेकिन साथ ही बारिश के भी पूरे आसार होते हैं। तो इसलिए इस दौरान 28 से 30 तारीख तक जम्मू में मौसम एक बार फिर खराब होने के आसार जताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। तो पवित्र जो तीर्थ यात्रा है मौसम की परिस्थितियों पर ही निर्भर है और प्रशासन मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर सख्ती से अमल करती है, और इसमें खास तौर पर ऐसा करने को कहा भी गया है। कई बार समीक्षा बैठकों में भी ऐसा हुआ, चाहे राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो या उच्च अधिकारी हो, उन्होंने हर बार प्रशासन के अधिकारियों को और तमाम जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं उन्हें खास तौर पर मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर सख्ती से अमल करने को कहा है। हाल ही में अभी पवित्र यात्रा के संचालन की समीक्षाओं का दौर हालांकि जारी जारी है, और इस दौरान अभी हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की और बैठक में उन्होंने श्री अमरनाथ जी के ट्रैक्स के काम की निगरानी, क्योंकि ये बाजाबता जो पहाड़ी श्रृंखलाओं का सफर है एक बाजाबता ट्रैक बनाया गया है जहाँ से गुजर कर ही जो श्रद्धालु हैं वो पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, उन ट्रैक्स के काम पर निगरानी और दोबारा चलने लायक बनाने के लिए बैठक की गई। और बैठक में उच्च अधिकारी जो हैं उसमें तमाम कैंप डायरेक्टर्स भी शामिल थे और तमाम जो अधिकारी हैं वो उस बैठक में थे, और उन्होंने लगातार हो रही बारिशों से पवित्र श्री अमरनाथ जी के द्वार की तरफ जाते ट्रैक्स को नुकसान से बचाने और ट्रैक्स को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने को के निर्देश दिए हैं। और राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने, ट्रैक के दोनों तरफ रेलिंग और भूस्खलन की जगहों को की पहचान करने और सुरक्षित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो ट्रैक पर एडिशनल MRT भी तैनात रखने को कहा गया है। ये MRT माउंटेन रेस्क्यू जो मिशन होता है उसके तहत ये लोग रेस्क्यू करते हैं। कई बार जो तीर्थ यात्री हैं माउंटेन में चलने की दिक्कतों से भी जूझते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर ये MRT के जो जवान हैं वो खास तौर पर श्रद्धालुओं की मदद भी करते हैं और
1: जी
0: उन्हें बाजाबता पवित्र गुफा तक भी पहुंचाते हैं। तो मौसम विभाग की जो है तमाम भविष्यवाणियों को ध्यान में रखते हुए ही ये तीर्थ यात्रा का संचालन हो रहा है, और इस दौरान शहर में भी मौसम के बदलने से बहुत अच्छा माहौल है और श्रद्धालु भी इस अच्छे माहौल में न सिर्फ सावन के इस महीने में

0: पूजा अर्चनाओं में भी व्यस्त हैं और उसके साथ साथ पवित्र गुफा की तरफ जाने की तैयारियों में भी व्यस्त हैं।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। अभी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनंतनाग से एस तारिक साहब। जी एस जी तारिक साहब
1: जी, पहलगाम के प्राचीन अमरेश्वरी मार्ग पर इस वक्त मतलब खुशगवार मगर अपराधुद है। हालिया वर्षा के बाद यात्रा मार्ग पर उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए चंद्रवारी से पवित्र गुफा तक प्राचीन मार्ग पर आवश्यक मरम्मत और पुण्य बहाली के काम शुद्धमत से जारी है। इसके चलते इस मार्ग को फिलहाल यात्रा के लिए आरजी तौर पर बंद रखा गया है। रीजनल कमिश्नर अंशुभ गर्ग ने अपने एक बयान में कहा था कि यात्रा को जारी रखने के लिए बालतल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम आमदराफ्त के तमाम आवश्यक बंदोबस्त कर दिए गए हैं और चंद रोज तक प्राचीन रास्ते पहलगाम से यात्रा निलंबित रहेगी। श्रद्धालुओं को बताता चलूं कि चंदनवारी से श्री अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा तक का पारंपरिक पैदल मार्ग लगभग 30 से 32 किलोमीटर लंबा है। चंदनवारी से पिशोताप तक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जो एक खड़ी चढ़ाई वाली मार्ग माना जाता है। पिशोताप से शिशनाथ तक का फासला करीब 9 किलोमीटर है। यहाँ कुदरती सुंदरिया से भरपूर शिशनाथ झील के साथ यात्रियों के विश्राम और क्याम के लिए शिविर भी स्थापित किया गया है। शिशनाथ से महाकुल स्टाप तक की दूरी लगभग 4.6 किलोमीटर है, जो इस पारंपरिक यात्रा मार्ग का सबसे ऊंचा बंदू माना जाता है। महागुल स्टाप से पंचतरणी तक का फासला करीबन 6 किलोमीटर, इसके बाद पंचतरणी से संगम 3, फिर वहां से श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा तक की दूरी मिलाकर लगभग 6 किलोमीटर बनती है। हाल के वर्षा के कारण इस दुश्वार पहाड़ी मार्गों पर कई स्थानों पर कटाव और नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते यात्रा पथ के बार बार मरम्मत और पुण्य बहाली व आवश्यक हो जाती है। इस क्रम में आज भी एजेंसियां जो तैमीर एजेंसियां है मार्ग की मरम्मत सफाई और पुनर्बहाली का कार्य में जुटे हुए हैं, ताकि यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। बहरहाल 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में 3 जुलाई से अब तक पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 4 लाख को पहुंच चुकी है, जबकि आज रिपोर्ट फाइल करने तक 9,000 से अधिक यात्री दर्शन प्राप्त कर चुके और दर्शन का सिलसिला भी जारी है। आज सुबह शिशनाग और पंचतरणी में रात को विश्राम करने वाले 4,231 श्रद्धा

0: महलों में पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन प्राप्त किया है। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 166 छोटी बड़ी गाड़ियों में मुश्तमिल 4,474 श्रद्धालुओं का एक नया जत्था बागदल मार्ग के लिए अपने पड़ाव पर पहुंच चुका है। इसमें 3,531 पुरुष, 785 महिला, 10 बालक, 96 साधु, 91 साधवी और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। मौसम की बात करें तो मौसम के बारे में आपको सूचित कर दूं कि पहलगाम से पवित्र अमरनाथ गुफा तक यात्रा मार्ग पर आज आमतौर पर अबरालुत मौसम रहा और पवित्र गुफा के आसपास अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिन के दूसरे हिस्से में हल्की वर्षा और रात्रि से बूंदाबांदी होने की संभावना है, जबकि शाम के वक्त कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। यात्रा प्रशासन के ओर से श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जी
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी आपने हमारे साथ ये अपडेट शेयर किया।
0: थैंक यू
1: सो मच।

0: विशेष प्रसारण श्रेया मनाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। शनशन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी फ़ोन लाइन पर अभी हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन साहब रामबन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तस्कीन साहब।
1: जी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हम बात करेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कल शाम को स्लाइडिंग की वजह से यहाँ रामसू के गांगरू इलाके में और उधमपुर के समरूली इलाके में बंद हो गई थी। बाद में इसे कल आरजी तो रेस्टोर किया गया था और आज सुबह जो श्री अमरनाथ यात्रा की 166 गाड़ियां थी और 4,474 यात्री जो इसमें सवार थे उनको निकाला गया और वो इस वक्त कश्मीर वादी में पहुंच चुके हैं। बालतल वाला ही काफिला आज था क्योंकि पहलगाम के रूट से अभी यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं है। इस दौरान समरूली पर के मुकाम जो है रेस्टोरेशन का काम अभी भी जारी है और उम्मीद है कि वहां कुछ वक्त के बाद ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। अभी ट्रैफिक रोका गया है जो सिविल ट्रैफिक जो सुबह 7 बजे के बाद जम्मू से जिसको एडवाइजरी के मुताबिक चलने की इजाजत थी तो वो अभी रुका है वहां पर। यहाँ कश्मीर से भी रामसू में बंद होने की वजह से रामसू में जो गांगरू के इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर जो काम चल रहा है वहां पर भी अभी डबल वे किया जा रहा है। हालांकि एक वे जिसे अमरनाथ यात्रा सुबह निकाली गई थी वो बिल्कुल एक वे क्लियर की गई थी तो अब श्री अमरनाथ यात्रा के निकालने के बाद जो बाकी ट्रैफिक था उसे रोक दिया गया था ताकि ये जो डबल वे किया जाए टू वे बनाया जाए मतलब मामूल का जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसको रेस्टोर किया जाए। अभी वहां पर काम चल रहा है और इस दोनों जगहों पर बंद होने की वजह से उधमपुर और समरोली में बंद होने की वजह से जो सैकड़ों की तैदाद में गाड़ियां जो है वो उधमपुर के समरोली के पीछे भी अभी रुकी हुई है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वहां पर काम तीन मशीनें वहां पर लगी हुई है और वो मतलब जंगी बुनियादों पर वहां पर वो डबल वे करने का काम किया जा रहा है। तो इसी तरह गांगरू में काम चल रहा है। अभी यहाँ पर उम्मीद है कि और वक्त लगेगा कुछ क्योंकि बहुत भारी पहाड़ी वहां पर गिर आई थी बहुत बड़ा स्लाइड था ये तो उसे हटाया जा रहा है तो लेकिन वहां पर लग रहा है कि अभी वक्त लगेगा और जो सैकड़ों की तैदाद में जो गाड़ियां काजीगुंड में काजीगुंड टनल से लेकर पीछे विश्व की तरफ रुकी पड़ी है इस वक्त खड़ी है उनको मतलब अभी उसमें टूरिस्ट भी है उसमें कुछ जो अनरजिस्टर्ड यात्री होते हैं वो भी है तो उन्हें अभी कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद ही उन्हें जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी जाएगी। जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो भी आपने हमारे साथ ये अपडेट साझा किया।
1: जी शुक्रिया।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको हम बता दें, हमारे पास दर्शन अपडेट आ चुका है दोपहर 2 बजे तक, जिसमें कुल संख्या है 9,069, जिसमें पुरुषों की संख्या

गया है 6048, महिला 2774, बालक 111, साधु 10, सुरक्षा कर्मचारी 126। तो कुल मिला के जो संख्या बनती है 9069 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गांधरबल से रहीम रिजवान साहब। जी रहीम रिजवान साहब
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बालतल में मौसम आज खुशगवार है, धूप खिली हुई है, 7 रोज के बाद मौसम में बेहतरी देखने को मिल रही है, जबकि बीते दिनों के दौरान भारी वर्षा के कारण यहाँ का वातावरण नाखुशगवार था, जिसके कारण मामूलाती जिंदगी पूरे क्षेत्र में मुतासर हुई। तहम आज इस सुहाने मौसम के बीच जहाँ यात्री पवित्र गुफा से धीरे धीरे दर्शन करके वापस आ रहे हैं, वहीं जो यात्रियों का जत्था आज घाटी आगमन हुआ वो जत्था अभी अभी बालतल बेस कैंप पहुंचा। छोटी बड़ी वाहनों में सवार ये यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। यात्रियों में गुफा जाने की काफी उत्साह पाई जाती है। इस दौरान जो 13,294 यात्री दुमेल कंट्रोल गेट पार करके पवित्र गुफा की ओर आज सुबह सवेरे रवाना हुए, वह यात्री धीरे धीरे भरारी मारा, काली मथा, पंचतरणी, संगम टाप एवं लवर केव जैसे कठिन पड़ाव तय करके पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं, जहां वे यात्री यके बाद धीकरे माथा टेक कर दर्शन करके वापस अपना सफर शुरू करेंगे। इस दौरान सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज 2 बजे तक 9,069 यात्री दर्शन से प्राप्त हुए, जिनमें 6,048 पुरुष, 2,774 महिलाएं, 111 बालक बालिका, 110 साधु एवं 126 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इस दौरान दर्शन करके वापस सुरक्षित बालतल पहुंचने वाले जो यात्री हैं वो उनकी तादाद कुल 957 है, जिनमें 681 पुरुष, 223 महिलाएं, 6 बालक बालिका, 2 साधु एवं 45 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। दर्शन करके सुरक्षित बालतल वापस पहुंचने वाले श्रद्धालु ने इस वर्ष जिला प्रशासन के द्वारा किए गए

0: व्यवस्थाओं को लेकर इत्मीनान का इजहार करते हुए आकाशवाणी को बताया कि जिला प्रशासन गांधरबल ने बादल मुख्य मार्ग से हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए उच्चतर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। इसके साथ साथ अगर हम चिकित्सा विभाग की बात करेंगे तो उन्होंने भी जगह जगह चिकित्सा केंद्र कायम किए हैं, जहां यात्रियों को हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रखी गई हैं। आप जानते हैं कि जो बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता है, ये तय करने के दौरान यात्रियों को अक्सर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है।
1: जी
0: वो कमी दूर करने के लिए चिकित्सा विभाग ने बहुत सारे ऐसे तिबी मराकज कायम किए हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाफिर मकदार में दस्तियाब रखे गए हैं, और जहाँ भी यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी लाग होती है तो उन्हें वही ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। इस तरह यात्रियों को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, और बार बार यात्रियों को प्रशासन के द्वारा ये सूचना दी जाती है कि वो रेन कोट, लाठी, गर्म कपड़े, पानी की बोतलें एवं अन्य व्यवस्थाएं जो है वो साथ रखें, क्योंकि ये रास्ता काफी कठिन माना जाता है और कभी भी इस रास्ते पर दिन में भी हल्की हल्की या तेज वर्षा भी हो रही है, जिस दौरान यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ का वातावरण, मौसमी हालात मद्देनजर रखते हुए श्रद्धालुओं को चाहिए कि वो धीरज एवं संयम एवं धीरज से काम लें, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी उनकी सहायता के लिए चाको चौबंद रखे गए हैं। इस तरह आज भी बालतल मुख्य मार्ग से जो तीर्थ यात्रा है वो धार्मिक रूप से जारी है। जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद। ये थे रहीम रिजवान साहब, हमारे संवाददाता गांधरबल से।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता इमरान नायकू साहब, श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से। जी इमरान साहब,
1: बिल्कुल। देखिए, आज अमरनाथ जी यात्रा जैसे हम सुबह से अपडेट कर रहे हैं कि जारी है, और जो पहलगाम एक्सेस है वहां पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ जी यात्री कश्मीर पहुंच रहे हैं और यहां से उन्हें अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के लिए दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है। और श्रीनगर में भी हम देख रहे हैं काफी उत्सव है, और खासकर यहाँ इस ट्रांजिट कैंप में, जैसे कि कल भी हमने अपडेट किया था कि बहुत सारे यात्री यहाँ पे रुके थे पिछले 5-6 दिनों से, और लकीली जैसे कि प्रशासन ने यात्रा को रिज्यूम किया और उन्हें यहाँ सोनमर्ग जो रूट हमारा है वहां से अमरनाथ जी गुफा के पवित्र दर्शन के लिए रवाना किया, और आज भी यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों को यात्रा के लिए रवाना किया गया है। और क्योंकि यहाँ तकरीबन 300 से ज्यादा अमरनाथ, 400 से ज्यादा अमरनाथ यात्री रुके थे, और भी यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं और कल उन्हें यहाँ से रवाना किया जाएगा। और जो यात्री श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जो अलग अलग देश के हिस्सों से कश्मीर पहुंच रहे हैं, और कई सारे यात्री जम्मू के ट्रांजिट कैंप में रुके थे, कुछ यात्री वहां जम्मू में मंदिर में रुके थे, और अब वो काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें जब प्रशासन की तरफ से ये संदेश मिला कि अब वो यात्रा के लिए जा सकते हैं, मौसम में बेहतरी आई है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज यहाँ श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में मजीद यात्री पहुंचे हैं, और जिन्हें कल यहाँ से अमरनाथ जी गुफा, पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। इसके अलावा जहां तक अभी मौसम का ताल्लुक है, श्रीनगर में इस वक्त बिल्कुल मौसम साजगार है, यानी कि मौसम बेहतर है, और इस वक्त हल्की धूप भी छाई हुई है, खिली हुई है, और इस सुहाने मौसम के बीच में यात्री भी काफी खुश है, क्योंकि जितना मौसम में बेहतरी आएगी और उतनी यात्रियों में जो खुशी है वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रशासन की तरफ से अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं रखी गई है, और जैसे मैंने सुबह भी अपडेट किया था कि कल शाम को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने यात्रा के ट्रैक की मेंटेनेंस को लेके ऑफिशियल्स को डायरेक्शंस दी कि एज सून एज पॉसिबल उसको ठीक किया जाए, और जल्द ही पहलगाम का जो रास्ता है उसे भी बेहतर और चलने के काबिल बनाया जाए, और इन द मीन टाइम उन्होंने यात्रियों की सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए अरेंजमेंट्स को, और खासकर पावर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और खाने पीने की फैसिलिटीज को लेके कहा कि इसमें किसी तरह की कोई कोताही या कमी नहीं आनी चाहिए। और साथ साथ यात्रियों से हम बात भी कर रहे हैं और वो प्रशासन की इन फैसिलिटीज और अरेंजमेंट्स को लेके काफी खुश है, और खासकर वो इंडियन आर्मी, बीआरओ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी की काफी वो तारीफें कर रहे हैं और खुश भी नजर आ रहे हैं। और अब हम उम्मीद ही रखते हैं कि ये मौसम बेहतर हो, जिस तरह से आज मौसम में बेहतरी आनी शुरू हुई है, ताकि एक तो मेंटेनेंस का काम बहुत जल्द मुकम्मल हो, दोनों रास्ते खुले, और साथ साथ जो यात्री आज पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए और मजीद यात्री आए और वो यात्रा मुकम्मल कर सके, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा करने के लिए।
0: जी बहुत शुक्रिया आपका, जो भी आपने हमारे साथ साझा किया।

0: हेलो एवरीवन, जय शंकर महाराज एंड नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले शंकर।
1: भाई जा कहाँ रहा है?
2: पता नहीं, तू जा, ख्याल रखना अपना।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपको बता दें, कई दिनों के इंतजार के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने आखिरकार श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिलने पर खुशी और राहत जाहिर की। कैसे इन्होंने अपनी प्रशंसा इजहार की, आए हम सुनते हैं।
1: बहुत खुशी है, क्या बताएं कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बाबा ने हम लोगों को बुलाया है, हम लोगों की परीक्षा ली है और अब हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। खुशी की कोई सीमा ही नहीं है, खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है। कोई डर नहीं है, बाबा ने बुलाया, किस बात का डर? हमारी देश की आर्मी इतनी अच्छी है, किस बात का डर? कोई बात का डर नहीं है भाई।
2: सर, हम लखनऊ से आए हैं, बहुत खुशी है सर, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कम से कम चालू हो तो हो ही, वेट करने के बाद में बहुत अच्छा लगा कि जो है इतने समय के बाद फिर यात्रा शुरू हुई है, हमें बहुत अच्छा लगा।
3: दिल्ली से आए हम, चार लोग आए, बहुत खुशी है। बाबा बहुत परीक्षा ले रहे हैं, हमें 4 दिन सामा में ही रोका गया और हमें आज निकाला है। देखो अब आप आगे बाबा क्या हमें दिखाते हैं।
4: दिल्ली से आए हम,
3: दिल्ली से हैं,
4: 21 तारीख से घर से निकले हुए हैं। 3 दिन से हम सांबा में थे, मंदिर में हमें स्टे कराया था और अब आज यहाँ लेके आए हैं। अब देखो आगे क्या होता है।
5: आज जो खुशी हो रही है हमें कि बहुत टाइम से हम यहाँ पे वेटिंग में थे, सब जने रुके हुए थे, पर आज जब यात्रा खुली तो सबको बहुत खुशी हो रही है कि बाबा के दर्शन होंगे और जो पीछे आने वाले उनको भी होंगे। कुछ लोग चले भी गए हैं तो नहीं जाना चाहिए था उनको, पर यात्रा बहुत लोग रुके हुए थे तो उन्होंने संघर्ष किया और बाबा ने बुलाया है तो बाबा दर्शन सबको देंगे, वो सबको जाना चाहिए अच्छे से। बाबा की मेहरबानी है सारी, बाबा ने बुलाया है तो बाबा रास्ता भी साफ करेंगे, सब करेंगे और सबको दर्शन देंगे बाबा। कामना यही करेंगे कि सबको खुश रखे और देश की रक्षा करें हमेशा और देश के पास कोई संकट नहीं आए।
6: मेरा नाम तो आयुष कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और जो कि 5 दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे और वाकई हम लोग इंतज़ार भी ख़त्म हुआ और बहुत ही उल्लास भी है हम लोग यात्री का, मतलब बाबा से मिलने का बहुत ही अच्छा लगेगा और भी इंटरेस्टिंग के साथ। खुशी है कि 5 दिनों के बाद वाकई सरकार बोली थी कि स्टार्ट कर दिया जाएगा वेदर को देखते हुए, और वाकई वही हुआ और बाबा भी सुन लिया हम लोग को, भक्तजनों का। अपने देश के लिए यही कहेंगे कि हमारे जितने भी सैनिक अभी उपलब्ध हैं और जितने भी BSF कमांडो हैं उनकी रक्षा करें, और वो तो रक्षा करते ही हैं भारत माता की, तो हम लोग को भी एक पहला और छोटी कदम बढ़ानी चाहिए कि उन लोगों की बात माननी चाहिए और थोड़ा सा मदद, उन लोगों का हौसला और बढ़ता है। बहुत ही खुशी और अंदर से भी उल्लास भी है। हाँ, बहुत बहुत जल्दी पास कर दिए।
7: जी, मेरा नाम सचिन कुमार रॉय है। हम लोग यहाँ पर 5 दिन से स्टे कर रहे थे, हम सब सोच रहे थे कि कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल से, पर आज फाइनली स्टार्ट हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा, खुशी मिल रहा है। उम्मीद तो थी, हिम्मत नहीं तोड़े थे, जब तक हिम्मत थी हम लोग आगे बढ़ते। बहुत खुशी है, यहाँ का बहुत अच्छा प्रशासन का भी बहुत अच्छा सेवा है यहाँ पे।
8: आज तो ऐसा खुशी हो गया था कि हम लोग बेस कैंप में दिवाली मना रहे थे, नाच रहे थे, तो आज बहुत खुशी हुई है।
5: आज जो खुशी हो रही है हमें कि बहुत टाइम से हम यहाँ पे वेटिंग में थे, सब जने रुके हुए थे, पर आज जब यात्रा खुली तो सबको बहुत खुशी हो रही है कि बाबा के दर्शन होंगे और जो पीछे आने वाले उनको भी होंगे। कुछ लोग चले भी गए हैं तो नहीं जाना चाहिए था उनको, पर यात्रा बहुत लोग रुके हुए थे तो उन्होंने संघर्ष किया और बाबा ने बुलाया है तो बाबा दर्शन सबको देंगे, वो सबको जाना चाहिए अच्छे से। बाबा की मेहरबानी है सारी, बाबा ने बुलाया है तो बाबा रास्ता भी साफ करेंगे, सब करेंगे और सबको दर्शन देंगे बाबा। कामना यही करेंगे कि सबको खुश रखे और देश की रक्षा करें हमेशा और देश के पास कोई संकट नहीं आए।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर द्वारा जुड़ सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9596990954 9599 9954। इसके अलावा हमें टोल फ्री नंबर भी है, जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर 1800 1807198, श्रीनगर के लिए 1800 1807199, जम्मू के लिए दोबारा 1800 1807198, श्रीनगर के लिए 1800 1807199। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, akashvanibhaltal@gmail.com, akashvanibhaltal@gmail.com। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको एक ज़रूरी सूचना हम साझा करना चाहेंगे कि सभी भक्तों के लिए जो अभी यात्रा की योजना बना रहे हैं, यात्रा पर निकलने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। बिना वैलिड परमिट के यात्रा की अनुमति नहीं है। नियम और प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। शन शन के अपडेट्स के लिए बने रहे आप हमारे साथ।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखें, प्रकृति का संरक्षण करें और अन्य यात्रियों के प्रति सहयोग और सद्भावना का व्यवहार रखें। किसी भी असुविधा की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, आज 5 बजे तक का दर्शन अपडेट हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, जिसमें कुल मिला के 16,889 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 11,068, महिला 5,404, बालक 186, साधु 35, सुरक्षा कर्मचारी 196। तो कुल मिला के 16,889 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, आइए आरती का आनंद लेते हैं।

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे।

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय,
0: मात पिता की
1: जय,
0: गुरु जनों की
1: जय,
0: सभी संतों की
1: जय,
0: सभी भक्तों की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: आज के आनंद की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: शंकर भगवान की
1: जय,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय,
0: शंकर

0: ¿Qué?
1: Ya es.

0: अब आरती का आनंद ले रहे थे। श्रोताओं, इसी के साथ हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे सजाद अहमद गुरको, मंजूर अहमद नजार और शौकत अहमद। मैं आपकी साथी उद्घोषित पजमान फेरोज़। इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में कल प्रातः 7 बजे फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।
1: कंगले गल्या ब्याह करके तू खुद कांटे बोरी से समझा रहा।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में काज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस और प्रभु राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित इस विशेष नाटक की पांचवी कड़ी।

0: जनसमूह को साथ ले अपने भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर के पास जा पहुंचे।
1: भरत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कहीं उनके मन में कुछ कपट तो नहीं है? अवश्य है, न होता तो सेना क्यों लाते? शायद वे समझते हैं कि राम वन में अकेले हैं, उनको मारकर निष्कंटक राज्य क्यों ना भोगा जाए। आखिर कैकेयी के बेटे हैं ना, लेकिन वे ये नहीं जानते कि सारे देवता और दानव मिलकर भी यदि आए तो राम को नहीं जीत सकते।
2: सैनिकों सावधान हो जाओ, हत बांसो बोरहु तरन, कीजिए घाटा रो।
1: देखता हूं मेरे रहते गंगा कैसे पार करती हैं, ऐसी मृत्यु कब कब मिलती है, और राम के लिए मरने में तो दोनों हाथ लड्डू हैं।

0: Yes, B. और मुक्ति भी।
1: लाओ मेरा तूड़ी धनुष और कवच उठा लाओ, देर मत करो।
2: जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। राम के प्रताप और आपके बल से हम भरत की सेना के एक एक योद्धा को चुन चुन कर मार डालेंगे। जीते जी पीछे हटने वाले नहीं, सारी धरती को रुंड मुंड से पाट देंगे।
1: युद्ध के बाजे बजने दो।
2: बहुत ही अच्छा शगुन है, रण में अवश्य सफलता मिलेगी।
3: खैरो राम ही भरत मनावन जाहीं, सगुन कहीं अस विक्रह नाहीं। सगुन कहता है कि भरत राम को मनाकर लौटा लाने के लिए बन जा रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिलो, युद्ध का अवसर नहीं आएगा।
0: शायद आप ठीक कहते हैं, नीति कहती है सहसा करे पछताहे बिमुड़ा। भरत का शील स्वभाव जाने बिना लड़ाई की घोषणा करना अपनी ही हानि करना है, इसलिए तुम सब लोग घाट पर डटे रहो, मैं अकेला जाकर सब भेद ले आता हूं।
4: उन्हें इस प्रकार समझा बुझाकर और भेंट के लिए नाना प्रकार की सामग्री लेकर वे भरत से मिलने के लिए चले। दूर से ही अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के मुख से ये सुनकर कि राम के सखा निषाद राज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, भरत झट रथ से कूद पड़े और उन्हें उठाकर छाती में भर लिया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेमुन हृदय समाई।
5: धन्य धन्य धन्य।
0: श्रृंगवीरपुर का निवासी निषाद आपके चरणों में प्रणाम करता है।
6: कहिए निषाद राज, सब प्रकार से मंगल तो है?
0: प्रभो आपकी कृपा से मेरे और मेरे करोड़ों कुलों का मंगल ही मंगल है। मेरे जैसे कपटी कायर मूर्ख और सब प्रकार से गए बीते को जब से राम ने अपना लिया, तभी से मैं संसार का भूषण बन बैठा हूँ।
4: निषाद की ऐसी प्रीत देखकर और सब लोगों ने भी उन्हें गले से लगा लिया। सबको लेकर वे श्रृंगवीरपुर आए और गंगा के दर्शन कर गदगद हो उठे। करहिं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करि मज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत बोल उठे,
6: माँ गंगे आपका रेणु सब सुख देने वाला है, काम धेनु के समान है। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि राम और जानकी के चरणों में मेरा सहज स्नेह बना रहे। निषाद राज चलो, चलकर मुझे वे सब स्थान दिखलाओ जहाँ राम लक्ष्मण और सीता ने शयन किया था, जिससे मेरे नेत्रों को शांति मिले और मन की जलन मिटे।
4: जब भरत जी ने उन स्थानों को देखा तो उनके अंतर से जो प्रीति उमड़ी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरण रेख रज आंखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। वो बार बार राम सीता और लक्ष्मण की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे।

0: देख कह कही अमंगल मूला, भई सी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं थिक थिक अघ उदति अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं पापों का समुद्र हूँ, अभागा हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरे ही कारण ये सारा बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है। कुल कलंक कर सृजउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता।
1: नाथ, आप व्यर्थ क्यों अपना जी छोटा कर रहे हैं? आप राम को प्यार करते हैं और राम आपको प्यार करते हैं। विदबाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीनी भावरी। ते रात पुने पुने करहीं, प्रभु सादर सराहना रावरी। मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि राम किसी को भी उतना प्रिय नहीं समझते जितना आपको। विश्वास कीजिए, अंत में सब मंगल ही मंगल होगा।
2: निषाद के इस प्रकार बार बार धीरज धराने पर भरत विश्राम करने के लिए चले गए। सवेरे बहुत जल्दी उन्होंने गंगा नदी को पार किया और सीताराम सीताराम रटते हुए प्रयाग पहुंच गए। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए थे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी ने भाव विह्वल होकर त्रिवेणी की स्तुति की।
0: अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्बान। जनम जनम रति राम पद, यह बरदान न आन।
3: तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। वाद गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही।
2: इसके पश्चात भरत जी ने मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर ने भरत जी से कहा, मैं तो तुम्हें देखकर यही समझ रहा हूँ मानो राम का प्रेम ही तुम्हारा रूप धरे चला आया है। भरत जी ने अपनी व्यथा प्रकट की। भरद्वाज मुनि के समझाने पर वे कुछ शांत हुए और एक रात वहाँ बिताकर सवेरा होते ही मुनि को प्रणाम कर वे निषाद राज के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ गए। जैसे साक्षात प्रेम ही दो शरीर धारण किए चला जा रहा हो। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागु। मार्ग में जो भी भरत को देख लेता ऐसा लगता मानो उसने परम पद पा लिया है। गांव गांव के स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़े चले आते। प्रेम में मगन हो वे ऐसी अटपटी बातें करते कि मन उमड़ उमड़ पड़ता।
4: कौन आ रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे सचमुच राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं।
5: अच्छा, राम लखन सखी हो ही कि ना ही? बै बप्पू बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहो सरिस समचाली।
6: बेशु न सो सखी सीय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई एही भेदा।
5: ना ना, तुझे क्या वो कहानी नहीं मालूम कि किस प्रकार राम को राज तिलक मिलने वाला था और किस प्रकार भरत की माता कैकेयी ने बिघ्न डाला। लेकिन सखी, भरत तो भरत ही हैं। देखो तो,
6: चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज। जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज।
5: हाय, कैकेयी माँ की कोख से ऐसा योगी पुत्र कैसे हुआ?
6: इसमें रानी का क्या दोष? ये सब करतूत तो विधाता की ही है, पर हमारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ। हम ओछे कुलों वाली, मलिन कर्म करने वाली, बुरे गांव में रहने वाली, हमें इनके दर्शन मिले।
5: सच सखी, हमने

0: बड़े ही पुण्य कर रखे थे, जिस कारण आज हमें इनके दर्शन हुए।
1: भरत के दर्शन पाकर रास्ते के लोगों के भाग्य खुल गए। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे, अच्छे अच्छे शकुन होते जाते थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि राम अवश्य मिलेंगे। प्रेम की मदिरा में सब ऐसे मस्त थे कि मुख से ठीक ठीक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं, बिह्वल बचन प्रेम बस बोलहीं। उसी समय निषाद राज ने कहा,
2: नाथ वो देखिए, वो है चित्रकूट पर्वत। उसके समीप ही मंदाकिनी के तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई कुटी बनाकर निवास करते हैं।
3: वो है चित्रकूट पर्वत कामदगिरी, वहां रहते हैं मेरे राम। सीतापति राम की जय, सीतापति राम की जय।
0: नाथ, मैंने स्वप्न में देखा है कि आपकी विरह की तपन से अपनी देह तपाए हुए भरत जी सारा समाज साथ लिए चले आ रहे हैं, और सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी।
4: लक्ष्मण, यह स्वप्न कुछ अच्छा नहीं है। जान पड़ता है कोई बहुत बुरा समाचार आने वाला है। देखो तो, आकाश धूल से भर गया है। पशु पक्षी घबराए हुए आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। बात क्या है
5: नाथ? नाथ, भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ इधर ही आ रहे हैं।
4: भरत आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं?
5: नाथ, उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी है।
4: सेना है तो कहीं भरत मुझे लौटा लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? एक ओर पिता का वचन, दूसरी ओर भरत का प्रेम। लेकिन नहीं, भरत तो सज्जन है, ज्ञानी है, वे मेरी बात निश्चय ही मान लेंगे।
6: स्वामी क्षमा कीजिए, मैं बिना पूछे ही बोलने लगा हूं। आपका सेवक जो ठहरा, दृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा।
4: नहीं नहीं लक्ष्मण, कहो क्या कहते हो?
6: आप बड़े सहृदय और सरल चित्त वाले हैं, सबको अपने समान समझकर प्रेम करते हैं। लेकिन स्वामी, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस हो ही जनाई। मैं मानता हूं कि भरत नीतिवान है, सज्जन है, ज्ञानी है, और आपके चरणों में उनकी प्रीति भी है। लेकिन तेउ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई।
4: लक्ष्मण,
6: वे समझते हैं राम वन में अकेले हैं, इसलिए सेना लेकर आ रहे हैं।
4: लक्ष्मण, लेकिन।
6: लेकिन क्या? अगर उनके मन में कपट ना होता तो सेना क्यों लाते? भरत ही दोसु देह को जाई, जग बौराई राजु पद पाई। नाथ, मेरे कहने का बुरा ना मानिएगा, उन्हीं के कारण हमें ये दिन देखना पड़ा है। अब और नहीं सहा जा सकता। मैं क्षत्रिय हूं, रघुकुल में मेरा जन्म हुआ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्षण भर में भरत को सिखा दूंगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, जो सहाय कर संकरु आई, तौ मारो रन राम दुहाई।
0: तात, तुम्हारा प्रताप सभी जानते हैं, किंतु सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए।
4: लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। संसार में यदि सबसे बुरा कोई मत है तो वह राजमत है। लेकिन जहां तक भरत का प्रश्न है, उनके समान श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हुआ। सुनो, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अंधकार भले ही सूरज को निकल जाए, आकाश भले ही बादल में खो जाए, पृथ्वी भले ही अपना स्वभाव छोड़ दे, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत कभी नहीं सता सकता। लखन, तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना।

0: जिस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय भरत जी निषाद राज के साथ श्री राम की ओर आ रहे थे। उनका मन शंकाओं से भरा हुआ था। सोच रहे थे कि कहीं मेरे आने का समाचार पाकर राम चले न जाएं। तभी निषाद राज ने टीले पर चढ़कर बरगद का वो पेड़ दिखाया जिसके समीप राम की कुटिया थी। फिर तो जहां भी भरत जी राम के चरण चिन्ह देख लेते, उसकी धूल उठाकर सिर माथे पर लगाते। उस समय वे इतने प्रेम विभोर हो उठते कि उनकी दशा देखकर जीव ही नहीं जड़ भी प्रेम में डूब जाते। धन्य है भरत, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। उसी समय उन्होंने राम को देखा। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सीय रघुनंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। उनका मन प्रेम से मगन हो उठा। हर्ष शोक सुख दुख सब भूलकर वे पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े।
1: हे नाथ रक्षा करो, हे स्वामी रक्षा करो, रक्षा कर, रक्षा कर।
2: भगवंत, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं।
0: उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। इस मिलन के प्रेम का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कोई भी कवि मन वचन और कर्म से इसका वर्णन नहीं कर सकता। दोनों भाई सुध-बुध फूल कर परम प्रेम में उमगे जा रहे थे। सीता जी तो इतनी विह्वल हो उठी थी कि बोल ही नहीं सकी। वास्तव में उस समय न तो किसी ने कुछ कहा ही, न किसी ने कुछ पूछा ही, क्योंकि सबका मन इतना प्रेममय था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह साहस करके निषाद राज ने कहा,
3: हे नाथ, मुनिराज वशिष्ठ के साथ सब माताएं, अयोध्या के नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आपसे मिलने यहाँ आए हैं।
0: सुनते ही राम उधर चल पड़े। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया, फिर अपनी माताओं को देखा जैसे सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कई के सरल सुभाए भगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहुरी, काल कर्म विधि सिर धरि थोरी। इस प्रकार सभी को सांत्वना देकर और सबसे स्नेह से भेंट करके वे आश्रम की ओर लौटे। वहां फिर मिलन समारोह शुरू हो गया। सीता ने अपनी सासुओं को देखा तो एकाएक सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो राज हंसिनिया बधिक के हाथ में पड़ गई हूं। और जब मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनाया तो सबके करुण क्रंदन से वो वन प्रांतर कातर हो उठा। लगा जैसे महाराज का स्वर्गवास उसी दिन हुआ हो। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर सब लोगों ने स्नान किया और दो दिन का व्रत रखा। उसके बाद दो दिन और वे उस वन प्रांतर में घूमते रहे। वनवासी कोल किरात और भील उनका नाना प्रकार से स्वागत करते। उनका प्रेम देखकर अयोध्यावासी लज्जित हो उठते। सोचते राम से इनको इतना प्रेम।

0: लेकिन सबके मन शंकाओं से भरे हुए थे। राम लौटेंगे भी कि नहीं? तभी गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुला भेजा, कहा, सबको सुख देने वाला तो एक ही काम है कि राम का राज तिलक हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि राम अयोध्या वापस कैसे जाएंगे?
1: हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
0: इसका एक ही मार्ग है और वो ये है कि तुम दोनों भाई वन में रहो और लक्ष्मण सीता सहित राम लौट जाएं।
1: मैं तो जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूं, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। हे गुरुदेव, राम और जानकी तो सबके हृदय की बात जानते हैं और आप भी सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपने जो निश्चय किया है उसे पूरा कर डालिए।
0: भरत के ये वचन सुनकर और उनका ऐसा स्नेह देखकर मुनि वशिष्ठ सहित सभी लोग गदगद हो उठे। भरत की विराट महिमा का पार कौन पा सकता है? भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। इसलिए वे उनको लेकर राम के पास पहुंचे, बोले,
2: भद्र राम, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालो जिससे सबको संतोष हो। हम लोग बहुत दुखी हैं, अपना हित अनहित कुछ नहीं सोच पा रहे हैं।
3: गुरुदेव, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उपाय तो सब आपके हाथों है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगा।
2: राम, तुमने बात तो ठीक कही पर भरत के स्नेह का विचार नहीं किया। मेरी बुद्धि तो भरत के हाथ बिक चुकी है। मैं शिव की दुहाई देकर कहता हूं कि तुम भरत की इच्छा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करोगे उसी से सबका कल्याण होगा। इसलिए पहले भरत की प्रार्थना सुन लो।
3: गुरुदेव, मुझे आपकी सौगंध है, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भय उन भुवन भरत समभाई। जिस भरत पर आपका इतना स्नेह है उसके सौभाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है? वे मेरे छोटे भाई हैं, उनके मुंह पर उनकी बड़ाई करने में मुझे संकोच हो रहा है। जो कुछ भी वे कहेंगे वैसा ही करने में मैं भलाई समझता हूं।
2: तब हे भरत, तुम संकोच त्याग कर अपने मन की बात कह डालो।
1: मैं क्या कहूं, मुझसे बड़ा पापात्मा इस संसार में कोई नहीं।
3: देखो भाई, जहां तक मेरी बात है मैं तो तुम्हें भली भांति जानता हूं, पर मैं करूं तो क्या करूं? जिन महाराज ने मेरे प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए प्राण तक त्याग दिए उनकी बात कैसे टालूं? उधर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बात का ध्यान रखूं, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं।

0: मुझे छोटे भाई के साथ वन में छोड़ दीजिए और आप राज्य संभालिए। यदि आप वन ही में रहना चाहते हैं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। या फिर हम तीनों भाई वन में रह जाते हैं, आप सीता जी सहित लौट जाइए। इनमें से जो भी प्रस्ताव ठीक लगे स्वीकार कीजिए, मुझ पर निर्णय मत छोड़िए। कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत केचित चेतु।
1: कुछ निश्चय हो पाता कि समाचार मिला राजा जनक आ पहुंचे हैं। एक बार फिर उस मिलन समारोह में करुण रस की सरिता प्रवाहित हो चली। सीता की माता राम की माताओं से मिलने आई। वो मिलन भी कैसा अपूर्व था। माता कौशल्या बार बार जनक पत्नी से यही कहती थी कि राजा जनक लक्ष्मण को लौटा ले चलें और भरत को वन में रहने दें। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहें नीक मोहि लागत नाही। लेकिन भरत और राम के प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता। सब यही चाहते थे कि राम राजा हों और भरत युवराज। सभी निरंतर इसी प्रश्न को लेकर विचार विनिमय कर रहे थे। सभा फिर जुड़ी। मुनि वशिष्ठ ने भरत के उच्च विचारों का परिचय देते हुए कहा,
2: राम, मैं तो यही कहता हूं कि तुम जो आज्ञा दोगे वही सब लोग मान लेंगे।
3: हे नाथ, जहां आपके साथ मिथिलेश जैसे महापुरुष विद्यमान हो वहां मेरा कुछ भी कहना तृष्टता होगी। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आप तथा मिथिलेश जो भी आज्ञा देंगे वही मैं शिरोधार्य करूंगा।
0: आप लोग मेरा यह अत्यंत अनुचित व्यवहार क्षमा कर दीजिए। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु वचन कठोरा। हे राम, आप मेरे माता पिता गुरु स्वामी और मित्र सभी कुछ हैं, परम हितकारी और अंतर्यामी भी हैं। अपने अज्ञान के कारण आपके और पिताजी के वचन टालकर ये सारा समाज लेकर यहां चला आया हूं। ये बड़ी ढिठाई में कर रहा हूं। आप मुझे यही समझकर क्षमा कर दीजिए कि मेरा जी बहुत दुखी है। अब आप आज्ञा दें और वही करें जिसमें मेरा कल्याण हो। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा।
3: भाई भरत, तुम धर्म धुरीण हो, तुम्हारा प्रेम अनुपम है। मन वचन कर्म से तुमने कभी कोई दोष नहीं किया। तुम सूर्य वंश के नियम को, सत्य का पालन करने वाले पिता को, समय को, समाज की दशा को, गुरुजनों की मर्यादा को, मित्र और शत्रु सबके मन को समझते हो। किसका क्या कर्तव्य है यह भी तुम जानते हो, और यह भी जानते हो कि कर्तव्य का पालन करने में ही तुम्हारा और मेरा हित है। इसीलिए भाई, तुम वही काम करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की मर्यादा की रक्षा हो।
0: किंतु आप मुझे संकट में
3: असह्य संकट सहने पर भी तुम प्रजा और परिवार को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं ऐसा कठोर आदेश दे रहा हूं, लेकिन विपत्ति में अच्छे भाई उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे बाण का आघात होने पर स्वयं अपना हाथ आड़े आकर उसे रोक लेता है।
0: हे नाथ, आपके वचन सुनकर मुझे वही सुख प्राप्त हो गया जो आपके साथ वन जाने में मिलता। अब कृपाल जस आयस होई, करो सीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावो जेहसे। मेरे मन में एक और भी लालसा है पर संकोच के कारण कह नहीं पाता।
3: कहो कहो, संकोच की क्या बात है?
0: यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के मुनियों के आश्रम, तीर्थ, वन प्रांतर, विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित ये धरती घूमकर देखाऊं।
3: भाई, यहां मेरी नहीं

0: अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर निर्भय होकर वन में विचरण कर सकते हो। उन्हीं के प्रसाद से इस जंगल में मंगल छाया हुआ है।
1: राम और भरत की यह वार्ता सुनकर सब लोगों को हर्ष भी हुआ और विषाद भी। विषाद इसलिए कि राम को अब वन में ही रहना पड़ेगा। माता कौशल्या ने समझ लिया कि संसार में जितना सुख है उतना ही दुख भी है। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधी रानी। उधर अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर भरत 5 दिन तक उस पवित्र वन में घूमते रहे। उसके बाद एक बार फिर सभा स्थल पर इकट्ठे हुए। राम संकोच के कारण कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन भरत उनके मन का भाव ताड़ गए। धीर गंभीर स्वर में वे बोले,
2: हे नाथ, आपने मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी। मेरे कारण सब लोगों को और आपको भी बहुत कष्ट हुआ। अब मुझे वो आधार तो दीजिए जिसके आदेश पर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करता रहूं। इस अवधि में मुझे क्या करना होगा ये भी समझाइए।
3: धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।
0: भाई, जब तक गुरु वशिष्ठ और राजा जनक जीवित हैं, हमें और तुम्हें स्वप्न में भी किसी बात का कष्ट नहीं हो सकता। हमारा कल्याण इसी बात में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उससे यदि भूल में कोई बुरा काम भी हो जाए तो वो बुरा नहीं समझा जाता। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पालें, चले हो कुमग पग पर ही न खालें। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अयोध्या जाओ और प्रजा का पालन करो।
2: लेकिन मेरा आधार?
0: तुम्हारा आधार तुम स्वयं हो।
2: नहीं।
0: तब
2: आपकी चरण पादुकाएं, मैं उन्हीं से आदेश लेकर प्रजा का पालन कर पाऊंगा।
0: जैसी तुम्हारी इच्छा।
4: श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय।

ऐसा श्रेष्ठ अवलंब पाकर भरत फूले नहीं समाए। उन्हें अब ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सीता और राम के साथ रहने में होता। लेकिन अभी तो विदा का वो पावन और विषाद से भरा दृश्य शेष था। सब एक दूसरे से भेंट करते नहीं आघाते थे। तन मन वचन सब कहीं प्रेम ही प्रेम उमड़ा पड़ रहा था। मेरी काव्यवाणी

0: उस दृश्य का वर्णन नहीं कर पाएगी। उसका स्मरण करते ही वो लज्जा से सकुचा गई है। विशेषकर सीता जिस समय अपने परिजनों से मिलकर लौटी और अपनी सासुओं से भेंट की, उस प्रीति का वर्णन करने के लिए तो कवि के हृदय में तनिक भी शक्ति नहीं रही है। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। लेकिन इस पर्व का भी अंत आना था। सबको विदा करके राम लक्ष्मण और सीता परिजनों के वियोग में बहुत देर तक दुखी मन बैठे रहे और भरत के प्रेम तथा स्वभाव का बखान करते रहे। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत सबानी। उधर भरत, जनक और वशिष्ठ राम के विरह में बड़े अनमने से उनका गुणगान करते हुए चौथे दिन अयोध्या पहुंच गए। राजा जनक ने 4 दिन वहां ठहर कर सब प्रबंध किए, फिर वे जनकपुर लौट गए। धर्मात्मा भरत ने शत्रुघ्न को माताओं की सेवा का भार सौंपा और गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अवधि में विशेष नियम का पालन करना चाहता हूं।
2: समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई।
0: गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी ने शुभ मुहूर्त में राम के चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं अयोध्या के दक्षिण में स्थित नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उन्होंने राज सुख छोड़ दिया और तापस वेश धारण कर लिया। अबध राज स्वर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। तेही पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरी की जिमी चंपक बागा।

काग रूपधारी भयभीत जयंत सब कहीं मारा मारा फिरा। ब्रह्मलोक शिवलोक समस्त लोकों में पुकारता हुआ अंत में नारद जी द्वारा प्रेरित वो श्री राम की शरण में ही आया। आतुर और भयभीत जयंत ने श्री राम से अपनी रक्षा की प्रार्थना की, भांति भांति से अपने किए पापों के लिए क्षमा मांगी। श्री राम जी ने उसे अपनी शरण आया जान, एक नयन करी तजा। इस प्रकार चित्रकूट में रहते हुए श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। वहां से विदा होते समय वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने श्री राम की अनेक

सीता जी ने विनम्र भाव से अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया की चरण वंदना की। अनसुया जी ने उन्हें शुभाशीष देकर पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया।

विश्राम पाकर ऋषि के चरण कमलों में शीश नवा श्री राम जी वन को चले। उनकी छवि का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर बेख बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहै कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। मार्ग में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। फिर शरभंग मुनि का उद्धार कर श्री राम आगे बढ़े। श्रेष्ठ मुनियों के समूह

के साथ हो लिए। श्री राम ने आगे चलकर एक विशाल अस्थि समूह देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि राक्षसों ने सभी ऋषि मुनियों को मारकर खा लिया है, ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर लगा है। इससे श्री राम जी के नेत्रों में आंसू छलक आए। ऋषि मुनियों को भयभीत जानकर उन्होंने निशचरहीन करहु मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। इसके पश्चात आगे चलकर श्री राम जी ने सुतीक्ष्ण की अविचल और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। मुनि सुतीक्ष्ण ने श्री राम की इन शब्दों में स्तुति की।

सुतीक्ष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने उन्हें अपनी अविचल भक्ति प्रदान की। फिर वे श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए। दोनों भाइयों ने आदर पूर्वक अगस्त्य जी को प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद और निर्देश पाकर वे पंचवटी के निकट जा पहुंचे। वहां दंडकवन में गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर श्री राम जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे।

लक्ष्मण जी की जिज्ञासा पर श्री राम ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव आदि के संबंध में विस्तार से समझाया। भक्ति योग को सुनकर

0: लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तब एक दिन क्या हुआ,
1: सुंदर तनिक इधर तो देखिए।
2: कौन, क्या है?
1: देखिए तो, तुम सम पुरुष न मौसम नारी।
2: क्या
1: हैरान न हो, ये संजोग विधि रचा बिचारी।
2: कैसा संजोग?
1: मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहुं नाही।
2: तो
1: ताते अब लगी रहूं कुमारी।
2: कुमारी?
1: हाँ। मनु माना कछु तुम्हें निहारी।
2: कुमारी उधर देखो, अहि कुमार मोर लघु भ्राता।
1: कुमार
0: सुंदरी सुनो, मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा।
1: लेकिन कुमार मैं तो आपको।
0: सुंदरी मैं तो एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ, प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा।
1: किंतु तुम्हारे लिए भी तो सब कुछ संभव है कुमार।
0: नहीं सुंदरी, नीति कहती है सेवक सुख चहे मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। असंभव, बिल्कुल असंभव।
1: कुमार आप पड़े हैं, आप ही मुझे।
2: नहीं सुंदरी, मेरा छोटा भाई ही उपयुक्त है।
1: कुमार तुम ही मुझे अपनाओ, ऐसा भरपूर यौवन, मोहक सुंदरता, 16 श्रृंगार से सजी हुई ये देह, तुम्हारे ही वरण करने योग्य है कुमार।
0: निर्लज्ज तो ही सो बरई, जो त्रिन तोरी लाज परिहरई। चल दूर हो यहां से।

0: लक्ष्मण क्या देखते हो?
1: ले ले पापिष्ठे, तेरे लिए यही दंड।
2: खर और दूषण, तुम दोनों भाइयों के रहते मेरी ये दुर्दशा तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है।
3: आखिर अपनी दुर्दशा का कुछ कारण तो बताओ।
2: कारण? कारण पूछते हो? जाकर राम और लक्ष्मण नाम के उन दो कुमारों से बदला लो।
3: तो क्या आप...
2: हाँ हाँ, उन्हीं कुमारों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। हे भाई, जाओ और उन लोगों से मेरे अपमान का बदला लो।
4: योद्धा, युद्ध का बिगुल बजाओ, जाओ और उन दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो।
0: लक्ष्मण, यह कोलाहल सुन रहे हैं? आकाश में उड़ती हुई इस धूलि से लगता है कि असुर समूह अपना आतंक दिखाने को आतुर है। वो देखो, राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची। भाई लक्ष्मण, सीता को तुम पर्वत की गुफा में ले जाओ। सावधान रहना।

0: अब लोग निज बल विकल भटति
1: सरा। घन घोर संग्राम हुआ, खर और दूषण मारे गए। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर मायापति श्री राम ने ऐसा कौतुक किया कि शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। उधर तो राक्षस राम राम कहीं तनु तजहीं पावहीं पद निर्माण, और इधर करी उपाय रिपु मारी छन मह कृपा निधान। फिर शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर लक्ष्मण जी सीता जी को गुफा से बाहर ले आए। यहां तो पंचवटी में श्री राम ने देवता और मुनियों को सुख दिया, वहां लंका जाकर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया।
2: अरे लंकेश, तूने अपने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवस दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आ राती। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सांप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे दशकंधर, तेरे जीते जी मेरी ये दशा।
3: अरे पहले ये तो बता कि तेरे नाक कान किसने काट लिए।
2: यहाँ बैठे बैठे क्या पूछते हो, वहाँ वन में जाकर देखो। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए।
3: तो फिर क्या हुआ?
2: तुम नहीं समझोगे, मैं तो उनके कामों को देखकर समझ गई हूँ कि वे दोनों भाई पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
3: अरे तू उन बालकों से डर गई?
2: देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलवध रथ सुरमुनि सुखदाता।
3: तू उनका नाम तो बता।
2: शोभा धाम राम असनामा,
3: और
2: तिनके संग नारी इक श्यामा, रूप रासी विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी।
3: तो क्या राम ने?
2: नहीं, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितब भगिनी करी ही परिहासा।
3: क्या तेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी?
2: मेरी पुकार खरदूषण ने सुनी, वे अपनी विशाल सेना लेकर मेरी सहायता को आए, लेकिन दोनों भाइयों ने सारी सेना को मार डाला।
3: और खरदूषण?
2: उन राजकुमारों ने खरदूषण और त्रिश्रा को भी मार डाला।
3: उन राजकुमारों का इतना साहस, क्या वे लंकाधिपति की शक्ति को नहीं जानते? शूर्पणखा, जा तू विश्राम कर, दोनों कुमार अपने किए का फल भोगेंगे।
4: सारी रात मुझे करवटें बदलते बीत गई, एक क्षण को भी नींद नहीं आई, पल भर को भी पलके नहीं लगी। आखिर यह सब कैसे हुआ? देवता मनुष्य नाग और पक्षियों में कहीं भी तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे किसी सेवक की भी बराबरी कर सके। फिर खरदूषण कैसे मारे गए? वे भी तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? तो क्या ये कुमार भगवान का ही अवतार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। अब इस तामस देह से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन और कर्म से मेरा यही दृढ़ मंत्र है। और अगर वे मनुष्य के रूप में किसी राजा के पुत्र होंगे तो उन दोनों को संग्राम में जीत कर उनकी स्त्री को छीन लूंगा।
1: रावण इस प्रकार का निश्चय कर अकेला ही रथ पर चढ़कर समुद्र तट पर रहने वाले मारीच के पास चला गया। इधर श्री राम ने एक अन्य ही युक्ति रच डाली। लक्ष्मण जी जब फल फूल कंद मूल लेने गए हुए थे तो श्री राम ने सीता जी से कहा,

अब मैं कुछ मनोहर नर लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी श्री राम के आदेशानुसार प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं, किंतु सीता जी ने अपने ही जैसी शील स्वभाव और रूप वाली विनम्र छाया मूर्ति वहां छोड़ दी। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। इधर तो ये लीला हो रही थी, उधर रावण की मंत्रणा और भय के कारण मारीच कपट मृग का रूप धारण कर पर्णकुटी के सामने होकर निकला। रावण भी वहीं उस वन में जा छिपा था।

0: आर्यपुत्र वो देखिए, वो कितना सुंदर है वो मृग। सोने का शरीर और उस पर जड़ी हुई मणियां, कितना मनोहर है ये हरिण।
1: हाँ, है तो।
0: सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर छाला। हे सत्य प्रतिज्ञ, इसे मारकर इसका सुंदर चर मुझे ला दीजिए।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। लक्ष्मण।
2: देव, अरे आपने तो परिकर भी कस लिया, धनुष पर बाण का भी संधान कर लिया।
1: लक्ष्मण, सीता की इच्छा है कि मैं उस स्वर्ण मृग को मारकर उसका चर्म इन्हें ला दूं। मैं ऐसा ही करूंगा, किंतु भाई वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं, अतः तुम सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी।
2: जैसे प्रभु की आज्ञा।
0: लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई संकट में है, जाओ तुम शीघ्र ही उनकी सहायता को जाओ।
2: माता, भक्ति विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परे की सोई।
0: ये बातें बनाने का समय नहीं है।
2: लगता है कठोर सत्य को आप समझ नहीं पा रही हैं।
0: और मुझे लगता है कि कायरता ने तुम्हारी बुद्धि और बल को हर लिया है। तुम जाते हो कि नहीं?
2: आपकी आज्ञा से मैं चला तो जाता हूँ, परंतु।
0: परंतु क्या?
2: कुछ नहीं, ये रेखा खींच रहा हूं, इसका उल्लंघन करने पर आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, स्मरण रखना।
3: नारायण नारायण नारायण।
1: देव,
0: यतिवर,
1: कथा कहानी सुनने में रुचि रखती हो?
0: आपकी कृपा है यतिवर।
1: राजनीति का उपदेश कैसा रहेगा राजकुमारी?
0: आपकी कृपा से वो तो मैं सुनती ही रही हूँ।
1: तब क्या प्रेमालाप?
0: गुसाई जी, आप साधु का वेश धारण किए हैं और इस प्रकार कामी पुरुषों की जैसी चेष्टाएं कर रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता।
1: मुझे उपदेश करती है? मेरे नाम और शक्ति से शायद तू परिचित नहीं है।
0: यतिवर, इस प्रकार दुष्टों की जैसी चेष्टाएं करके आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? मुझे तो आपके साधु होने में ही संदेह है, आखिर आप हैं कौन?
1: ले देख मेरा असली रूप। तेरे सामने लंकाधिपति रावण खड़ा है, तेरी अनंत रूप राशि का भिखारी।
0: अरे अरे दुष्ट, तेरा इतना साहस, खड़ा तो रहे, वो देख, वो देख स्वामी आ गए।
1: कहाँ है, कहाँ है तेरे स्वामी? आ, इस रथ पर बैठ और मेरे साथ चल।
0: प्रभु कुल कमल देवाकर।

0: हाथ से मुझे भुला बैठे। देखो देखो ये पापी मुझे बलपूर्वक लिए जा रहा है। देखो लक्ष्मण, तुम्हार नहीं दोसा, सो फल उपायो के नेवरोसा। स्वामी, स्वामी की कृपा तो मुझ पर बहुत है, पर वो स्नेह प्रभु सब में दूर है। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन बताए।
1: सीते पुत्री करे से जनित्रा था, करिहे जात दान करना था, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, मेरे भय चले सी न जाने ही मोही।
2: कि मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये अवश्य ही आज मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर का परित्याग करेगा।
1: रावण, मेरी बात सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सलब कुल तोरा।
2: अरे बूढ़े जटायु, ठहर,
3: शायद तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है।

0: गृध्रराज जटायु को घायल कर रावण सीता जी को ले चला। विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर राम जी का नाम लेकर वस्त्रालंकार आदि फेंकती चली गई। रावण ने सीता जी को ले जाकर अशोक वन में रखा। इधर लक्ष्मण जी से सीता जी के संबंध में समाचार पाकर श्री राम जी बहुत दुखी हुए। पर्णकुटी को सीता जी से रहित देखकर वे बहुविध विलाप करने लगे।
1: हा गुलखानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, तुम कहाँ हो प्राण वल्लभे, तुम कहाँ हो? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी?
2: तात, विषाद का परित्याग कीजिए, आपके समान धीर पुरुष संसार में दूसरा नहीं है।
1: सुनो जानकी, तो ही बिन आजू हर से सकल पाई जन राजू।
2: तात, देखिए सारा वन प्रदेश पार कर हम कहां आ पहुंचे।

0: राम
1: तात
0: राम
1: इधर देखिए, कोई पंख कटा विशाल पक्षी दम तोड़ रहा है।
0: राम अरे राम अरे ये तो गिरधिराज जटायु है। तात तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी इस दुर्गति का कारण कौन है?
2: नाथ दशा न ये गति कहनी तहीं खल जनक सुता हर लीनी।
0: तात जानकी किधर है, किधर गया है दशानन?
2: ले दक्षिण दिशी गय गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई।
0: उन्हीं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है तात।
2: दरस लागे प्रभु राखे प्राण चलन चहत अब कृपा निधाना।
0: तात आप अपने देह की रक्षा कीजिए।
2: नाथ मरते समय जिनका नाम मुख पर आ जाने से पापी भी मुक्त हो जाता है। सो मम लोचन गोचर आ गए राखो देह नाथ के खा गए।
0: तात आपने अपने शुभ कर्मों से ही सदगति पाई है। परहित बस जिनके मन माही तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु मम धामा देऊ काह तुम पूरन कामा।
2: नाथ ये सब आपकी कृपा है।
0: मेरी एक प्रार्थना है। सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई जो मैं राम तकुल सहित कह ही दसानन आई।
3: राम के इतना कहते ही गीध देह तजी धरि हरि रूपा भूखन बहुपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुति करत नयन भरी बारी। अबिरल भगति मांगी पर गीध गयउ हरि धाम तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसके पश्चात दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए और वन की सघनता देखते हुए आगे चले। मार्ग में उन्होंने कबंध का वध किया, उसे गति देकर श्री राम जी भाई सहित शबरी के आश्रम में पधारे। दोनों भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन ना आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे।
4: प्रभु मेरा अहोभाग्य आप इस दीन की कुटिया में पधारे। कंदमूल के सिवा इस दीन के पास और है ही क्या। कृपा कर आप यही ग्रहण कीजिए प्रभु।
0: देवी यह तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इनके माधुरी के सामने शटरस व्यंजन भी व्यर्थ है।
4: प्रभु कही विधि अस्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मती आभारी। मैं तो बहुत ही पापनी और मंद बुद्धि हूं प्रभु।
0: देव मेरी बात सुनिए, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पांति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन कुन चतुराई भगति हीन नर सोई कैसा बिनु जल पारित देखी अजैसा। और मैं देख रहा हूं कि शास्त्रों में बताई गई जो नौ प्रकार की भक्ति है वह सब तुम में दृढ़ रूप में विद्यमान है। इसलिए योगियों को भी जो गति दुर्लभ है वही आज तुम्हें सुलभ हो गई।

0: ये सब आपकी कृपा है प्रभु।
1: देव, अब अगर तुम्हें जानकी का कुछ भी पता हो तो कृपा कर हमें बता दो।
0: पंपा सरही जाऊ रघुराई, तहां होई ही सुग्रीव मिताई, सो सब कहे ही देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मत धीरा।
2: इस प्रकार शबरी ने नमस्कार प्रभुपद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। श्री राम जी को सारी कथा सुनाकर हृदय में उनके चरण कमलों का ध्यान करके वो योगाग्नि में देह त्याग कर दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। तदनंतर अनेक कथा संवाद कहते श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन की छटा निरखते पंपासर जा पहुंचे। वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। तभी नारद मुनि ने सीता हरण की घटना से व्यथित सीता जी के वियोग में व्याकुल श्री राम जी के दर्शन किए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राधे राधे
1: राधे राधे
0: राधे राधे
1: राधे राधे।